श्रोताओं, मातृवंदना सुनने के बाद अब सुनिए आनंद मूर्ति गुरुमा और साथियों की आवाजों में संत कबीर की रचना।

0: श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही आज का हमारा प्रभाती वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। अब सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें केले में पोषक तत्वों के महत्व एवं प्रयोग की विधि के बारे में। केला हमारे देश की प्रमुख फलों की श्रेणी में आता है। केले की उत्पादन क्षमता अधिक होने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उपज अधिक मिलती है, जिसका परिणाम आज यह है कि केले की खेती का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। केले के फलों में शर्करा, कैल्शियम तथा फास्फोरस की काफी मात्रा पाई जाती है। अच्छे गुण वाले केले की उपज प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों का काफी योगदान होता है। पोषक तत्वों की कमी से पौधे की वृद्धि एवं उत्पादन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों और प्रयोगों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि प्रति टन केले के उत्पादन के लिए 9.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 3 किलोग्राम फास्फोरस व लगभग 2.28 किलोग्राम पोटाश केले का पौधा जमीन से ग्रहण करता है। केले के जरूरी पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश मुख्य हैं। इनको उचित मात्रा एवं सही समय पर देने से ही अच्छे गुण वाले फलों की अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। केले की बढ़वार को प्रभावित करने वाले तत्वों में नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख स्थान है। नाइट्रोजन के प्रयोग का असर पौधे की वृद्धि के प्रारंभिक काल में पत्तियों की बढ़वार पर पड़ता है। इसके प्रयोग से पत्तियां चौड़ी और लंबी निकलती है, जिसका सीधा असर पैदावार पर होता है। नाइट्रोजन का ह्रास ज्यादा ना हो, इसके लिए नाइट्रोजन की खाद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार में केले में प्रयोग करना चाहिए। जहां तक पोटाश का सवाल है, पोटाश केले की फलन में मदद करता है। ये कलियों के विकसित होने में काफी सहायक होता है। पोटाश की कमी से पत्तियों पर पीले धब्बे बनते हैं एवं पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं। फास्फोरस तत्व केले में स्वस्थ प्रकंद तथा मजबूत जड़ों के विकास के लिए अति आवश्यक है। केले में पोषक तत्वों की आवश्यकता जमीन में उसकी उपलब्धता एवं केले के किस्म पर निर्भर करती है। मुख्यतः एक केले के पौधे के लिए 300 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस एवं 300 ग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। केले में नाइट्रोजन 5 बार में, फास्फोरस 2 बार में तथा पोटाश को 3 बार में प्रयोग में लाना चाहिए। पौधे की रोपाई के समय सिर्फ 300 ग्राम सुपरफास्फेट प्रति पौधा देना चाहिए। जब पौधा 1 माह का हो जाए तो 130 ग्राम यूरिया तथा जब पौधा 2 महीने का हो जाए तो 130 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम सुपरफास्फेट व 170 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का मिश्रण प्रति पौधे को देना चाहिए। 3 माह बाद भी लगभग 130 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम सुपरफास्फेट व 170 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। पौधे में फूल आने के 2 माह पहले 130 ग्राम यूरिया एवं फूल आने के 1 माह बाद

0: 130 ग्राम यूरिया तथा 170 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। उर्वरकों का प्रयोग कभी भी आभासी तने के पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी कोमल एवं मुलायम होता है। उर्वरकों के सीधे संपर्क में आने से इसे हानि हो सकती है। अतः किसान भाइयों, उर्वरकों का प्रयोग पौधे के चारों ओर करें और पौधे से 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। उर्वरकों की जो मात्रा हमने आपको बताई, ये औसत मात्रा है। आपके खेत में उर्वरकों की कितनी मात्रा आपको देनी है, इसका सही सही ज्ञान आपको तभी होगा जब आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएंगे।
1: अभी आपने सुना एग्री टिप्स। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमरीका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देशभर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the composition and calorific value of the gas. Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for the submission of applications for the verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. CBSE has advised all the eligible students to take note of the extended deadline and complete the application process within the stipulated time. The Reserve Bank of India, RBI, has announced key changes to the regulatory framework governing investments by foreign portfolio investors, FPIs, in government securities aimed at improving ease of investment and simplifying compliance requirements. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will no longer be required to comply with short-term investment limits, security-wise limits, and also concentration limits. In chess, Grandmaster R. Pragnananda has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kemer. Pragnananda, who began the day in the third place, secured a crucial classical win worth 3 points to finish with 18 points and seal the title. In hockey, India defeated Pakistan 5-3 in the semi-final of the men's Under-18 Asia Cup in Kakamigihara, Japan, to set up a title clash against the hosts. In cricket, India will take on Afghanistan in a one-off test match at the Maharaja Yadavendra Singh International Cricket Stadium in New Chandigarh today. The match will begin at 9:30 a.m. Indian Standard Time. This will be the first test between the two sides since 2018, when Afghanistan played its maiden test match. Shubman Gill will lead the men in blue. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह की 6:10 हुए हैं। आप सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी सेंटिनल मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज शाम 6:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा जलयान। कल रविवार 7 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। जलयान सिंधु लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रविवार 7 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल रविवार 7 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल रविवार

0: 7 तारीख को सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा और सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से वापस श्रीविजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल रविवार 7 तारीख को सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा और सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्रीविजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल रविवार 7 तारीख को दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल रविवार 7 तारीख को दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा और 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल रविवार 7 तारीख को दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से छूटेगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्रीविजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप के लिए कल रविवार 7 तारीख को शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा और दूसरे दिन 8 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर श्रीविजयपुरम के लिए होगी। श्रोताओ अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। जी आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं। श्रोताओं आप सुनिए हमारा कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

श्रोताओं नमस्कार। इंद्रधनुष कार्यक्रम में आज बातें रेखा की। आकाश में खिंची इंद्रधनुष की रेखाएं हो, हथेले में उभरी भाग्य की रेखाएं हो, या फिर जीवन में बनी मर्यादाओं और सीमाओं की रेखाएं। रेखा केवल लकीर नहीं होती, ये हमारी यात्रा, हमारे अनुभवों और हमारी पहचान की कहानी भी कहती है।

सीमाएं कभी बंधन नहीं होती, बल्कि वे सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। जैसे नदी अपने किनारों की रेखा में बहकर जीवन देती है, वैसे ही जीवन की कुछ मर्यादाएं हमें संतुलन और अनुशासन का पाठ पढ़ाती हैं। लेकिन कुछ रेखाएं ऐसे भी होती हैं जो हमारे जीवन में पहले ही खिंच जाती हैं, जिन्हें हम भाग्य, नियति या तकदीर की रेखाएं कहते हैं।

कहते हैं कि हाथों की रेखाएं बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन कर्म की स्याही उनसे भी गहरी होती है। जीवन की किताब में कुछ पन्ने पहले से लिखे होते हैं तो कुछ हमें स्वयं लिखने होते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसी घड़ियां आती हैं जब मन अपने भाग्य से सवाल करता है, अपनी कहानी किसी को सुनाना चाहता है।

0: रेखाएं केवल रास्ते नहीं बताती बल्कि ये भी सिखाती है कि हर मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने कदमों की दिशा स्वयं तय करनी होती है। और अब किसी नए विषय के साथ इंद्रधनुष कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान की 261वीं कड़ी। गायक कलाकार है रंजनी जोगलेकर और श्रीकांत पारगांवकर।

नवधा भक्ति का उपदेश देकर शबरी का उद्धार करने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण पंपासर नामक सरोवर की ओर अग्रसर हुए। गहन वन के अभेद्य रास्ते पार करते हुए अरण्य की शोभा अनायास ही मन को हर लेती है। विशाल वृक्षों से लिपटी लताएं ऐसी मालूम होती हैं जैसे विभिन्न आकार प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं। कोयल कूक रही है। ढेक और महोक पक्षी को देख ऊंट और खच्चर का बोध होता है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो कामदेव की सेना में अश्वों की भूमिका निभा रहे हैं। पर्वतों के शिलाखंड रथ और उनसे उत्पन्न निर्झर नगाड़ों का नाद उपस्थित करते हैं। ऐसी दृश्यावली में जहां कामदेव की सेना प्राणी मात्र के हृदय में काम का संचार करती है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामी लोगों की विवशता तथा धीर और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ करने वाली श्री राम भक्ति की महिमा का गान प्रस्तुत किया है।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 261वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे रंजना जोगलेकर और श्रीकांत पारगांवकर व संगीत संयोजन थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए वतन के गीत के तहत देशगान।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके कारण समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को 8 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी।

श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सवेरे 7:15 पर सुनिए विविध भारती मुंबई से रिले प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इसी समय पर प्राइमरी चैनल पर 7:15 पर सुनिए देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी। श्रोताओं, सवेरे 7:30 पर सुनिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय होगा योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधी रोगों का प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगी मेडिकल ऑफिसर योगा एंड नेचुरोपैथी डॉक्टर नंदिनी। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे विशाल गोस्वामी। श्रोताओं, पॉडकास्ट श्रृंखला का 4th एपिसोड प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सवेरे 9:00। शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में सुधा रघुनाथन का गायन प्रसारित किया जाएगा सवेरे 9:30 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए सवेरे 10:00 कशिश, दिन के 11:00 गीत गुंजन और 11:30 पर होगा गीत अतीत। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम जिसके तहत कुछ फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम। श्रोताओं, 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे जसवंत सिंह, अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम। 1:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही हमारी स्थानीय सभा समाप्त होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसके तहत 2:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर होगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। श्रोताओं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी निकोबारी कार्यक्रम के साथ। शाम 4:30 पर प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम 4:45 पर। तमिल कार्यक्रम शाम 5:00 जिसके तहत युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा। बांग्ला कार्यक्रम शाम 5:30 पर जिसके अंतर्गत एक ही कलाकार द्वारा कुछ फिल्मी गीत आप सुनेंगे। किसान वाणी कार्यक्रम शाम 6:00 जिसके तहत कृषि कार्यों से जुड़ी महिला श्रीमती सरिता से बातचीत आप सुनेंगे। 6:30 पर होगा कार्यक्रम आमने सामने। 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रमेश मुंगड़ा की लिखी झलकी 20वीं सदी का बच्चा। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 7:05। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं बताया जाएगा 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए दिल ने फिर याद किया 7:20 पर।

युवानी कार्यक्रम 7:30 पर, जिसके तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है। रोजगार समाचार का समय रहेगा 8:30 और तत्पश्चात सुनिए गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8 सुनिए दिल्ली से प्रसारित सरकार की 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर सुनिए राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती और रात 10 होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसके तहत ऋषिकेश गगुरड़े का स्वर ख्याल आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओ, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 हुए हैं। अब कुछ ही क्षणों के बाद संस्कृत समाचार बुलेटिन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैंपलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकासयात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्रीशाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत द्वादश वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और 100.9 मेगाहर्ट्स एफएम पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7 बजे हैं। जन सूचनाएं।

इसके अंतर्गत मौसम की जानकारी। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 34.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 95% तथा न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 28.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय सुबह 4:54 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:42। जन सूचनाएं के तहत ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और उड़ान संख्या 2936 दिन के 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा। ये थी उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं, आपको बता दें आज सवेरे 7:30 पर होगा हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय होगा योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधी रोगों का प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगी मेडिकल ऑफिसर योगा एंड नेट्रोपैथी डॉक्टर नंदिनी। विषय से संबंधित सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 2325558। एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार

our portal https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

0: जनसूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने कल लोक निवास में द्वीप समूह के लिए पर्यटन कैलेंडर लॉन्च किया। अंडमान निकोबार यातायात पुलिस ने सीसीटीवी आधारित ट्रैफिक चालान जारी करना शुरू कर दिया है। मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त ने डिगलीपुर क्षेत्र का दौरा कर जिले में चल रही विभिन्न विकासात्मक पहलों की समीक्षा की और जहाजरानी सेवा निदेशालय ने शहीद द्वीप और रंगत के बीच एक अतिरिक्त जहाज सेवा शुरू की है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने कल लोक निवास में द्वीप समूह के लिए पर्यटन कैलेंडर लॉन्च किया। उन्होंने जून 2026 से अप्रैल 2027 तक के आयोजनों के कैलेंडर का अनावरण किया। कैलेंडर में आगामी पर्यटन सीजन के लिए मासिक आयोजनों की जानकारी दी गई ताकि पर्यटक और टूर ऑपरेटर्स अपनी यात्रा कार्यक्रम की योजना पहले से बना सकें। इस अवसर पर मुख्य सचिव के साथ प्रशासन, अंडमान निकोबार पुलिस तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अंडमान निकोबार यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सर्विलेंस कैमरों के माध्यम से उल्लंघनकर्ताओं के लिए सीसीटीवी आधारित ट्रैफिक चालान जारी करना शुरू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, यातायात अनुशासन में सुधार करना और यातायात कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना है। बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट के यात्रा करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, तेज गति, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना और अन्य यातायात अपराधों के लिए मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किया जा सकता है। इसके अलावा गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों की भी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने पिछले सप्ताह शहर भर के विभिन्न स्थानों पर लगे सर्विलेंस कैमरों के माध्यम से 450 से अधिक चालान जारी किए हैं। यातायात पुलिस ने जिम्मेदारी से वाहन चलाने, यातायात संकेतों और सड़क चिन्हों का पालन करने और एक सुरक्षित व सुव्यवस्थित यातायात वातावरण बनाए रखने में नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है। द्वीप समूह में कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को कार्बन फाइबर टेलीस्कोपिक हार्वेस्टर की खरीद पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अधिकतम 30,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है। आवेदन पत्र निकटतम कृषि उपडिपो या क्षेत्रीय कृषि कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। कैंबल बे में कल पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों ने नारियल की कीमतों में लगातार की जा रही कटौती के संबंध में क्षेत्र के सहायक आयुक्त श्याम ताशी दावा से मुलाकात की। किसानों ने बताया कि पहले नारियल की कीमत 34 रुपये थी, जो अब घटकर केवल 18 रुपये प्रति नग रह गई है। उन्होंने सहायक आयुक्त से नारियल के उचित मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। सहायक आयुक्त ने इस मामले की पूरी जांच करने और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान

करने का आश्वासन दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, समीक्षा बैठक और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मध्योत्तर अंडमान जिला के उपायुक्त सुशांत पादा ने कल जिला परिषद अध्यक्ष आर अलगर स्वामी के साथ कल डिगलीपुर क्षेत्र का दौरा कर जिले में चल रही विभिन्न विकासात्मक पहलों की समीक्षा की। इस दौरान जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डिगलीपुर तहसील के तहत विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुखों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं और जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना तथा आपसी विश्वास को बढ़ावा देना था। बैठक के दौरान तहसील में चल रहे विकासात्मक कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा की गई। विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों और PRI प्रतिनिधियों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। बुनियादी ढांचे के विकास, जनकल्याण, नागरिक सुविधाओं और स्थानीय महत्व के अन्य मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करने, चल रही परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने छुट्टियों के दौरान यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए शहीद द्वीप और रंगत के बीच एक अतिरिक्त जहाज सेवा की घोषणा की है। ये सेवा पहले से चल रही दो साप्ताहिक सेवाओं के अतिरिक्त होगी। ये विशेष सेवा 8 जून से शुरू होगी और पूरे महीने प्रत्येक सोमवार को संचालित की जाएगी। MV स्ट्रेट आइलैंड 8 जून को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए रवाना होगा तथा अगले दिन सुबह 7 बजे रंगत से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए वापस श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। इस यात्रा के लिए टिकट आज सुबह 9 बजे से जारी किए जाएंगे। टिकटों की बुकिंग ई टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए पोर्टल से सीधे जुड़ने वाला एक QR कोड भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा यात्री स्टार टिकटिंग काउंटर से भी टिकट खरीद सकते हैं। अंडमान निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्रशिक्षण केंद्र की ओर से आयोजित 55वें एक्सटर्नल सब ऑफिसर्स कोर्स का समापन हो गया। ये कोर्स गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज नागपुर द्वारा प्रतिष्ठित राज्य प्रशिक्षण केंद्र की मान्यता मिलने के बाद 12 जनवरी को शुरू हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को राज्य प्रशिक्षण केंद्र की मान्यता मिलने के बाद ये दूसरा बैच था जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से कुल 27 अग्निशमन कर्मियों ने इस 22 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस उपलक्ष्य में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक अग्निशमन उमा शंकर मुख्य अतिथि के रूप में, साथ ही उप पुलिस अधीक्षक अंकेश यादव, अन्य वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी, संकाय सदस्य और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रव्यापी अभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत कृषि विभाग की ओर से हैडो स्थित बागवानी केंद्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि निदेशक देवव्रत बसंतिया ने पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि विकास के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए मसाले और फल के पौधे लगाए। उन्होंने अपने संबोधन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज लगाया गया हर एक पेड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार है और स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उधर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण क्षेत्रीय केंद्र की ओर से वनवासी कल्याण आश्रम में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रमुख डॉ. लालजीत सिंह ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान प्रतिभागियों को स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिलाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी ने कल लोक निवास में द्वीप समूह के लिए पर्यटन कैलेंडर लॉन्च किया। अंडमान निकोबार यातायात पुलिस ने

सीसीटीवी आधारित ट्रैफिक चालान जारी करना शुरू कर दिया है। मध्य उत्तर अंडमान जिला उपायुक्त ने डिगलीपुर क्षेत्र का दौरा कर जिले में चल रही विभिन्न विकासात्मक पहलों की समीक्षा की और जहाजरानी सेवा निदेशालय ने शहीद द्वीप और रंगत के बीच एक अतिरिक्त जहाज सेवा शुरू की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी।

श्रोताओं, वतन और अपनों की याद जब दिल को छू जाती है तो हर शब्द एक भाव बन जाता है। घर से आई चिट्ठी के जरिए उसी अपनापन और बिछड़न के दर्द को बयां करता है या भावपूर्ण गीत।

श्रोताओं, देश की रक्षा के लिए समर्पण, साहस और बलिदान की भावना को दर्शाता है यह प्रेरणादायक गीत। साथ ही यह संदेश भी देता है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम सब सबसे पहले भारतीय हैं और देश की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: नमस्कार श्रोताओं, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, तनाव और अनिद्रा जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। अक्सर हम सोचते हैं कि इन समस्याओं से बचने के लिए केवल दवाइयाँ ही उपाय है, लेकिन क्या योग भी इनके प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारा विषय है योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधी रोगों का प्रबंधन। इन विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मेडिकल ऑफिसर योगा एंड नेट्रोपैथी डॉक्टर नंदिनी। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोता, विषय से संबंधित सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 232558। हमारे द्वीपों का स्टडी कोड है 031192। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जीवन शैली संबंधी रोग क्या होते हैं और आजकल ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं?
1: जैसे कि हम बात करते हैं जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल, उसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कोई भी रोग होता है उसको हम दो हिस्से में भाग देते हैं। एक है कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो एक इंसान से दूसरे इंसान से फैला जा सकता है, और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि एक दूसरे से नहीं फैलती है, बट हमारी लाइफस्टाइल के वजह से या उसमें डिसेबिलिटी होने की वजह से होने वाली बीमारी है। उसमें होता है हमारे डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी कि रक्तचाप बढ़ाना, मोटापा बहुत कॉमनली यूज होने वाली जी है, थायराइड या मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कैंसर्स, ऐसी बीमारियां इसमें आती हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो लो फिजिकल एक्टिविटी या निल फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ पे हम लोग रनिंग, योगा या फिजिकल एक्टिविटी में कोई भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। हमारा पुअर डाइट, हम प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर खाना या पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करते। मैक्सिमम हम लोग जंक फूड या फास्ट फूड खाने पे हैबिचुअल हो जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो स्लीप पैटर्न होता है, जैसे कि हम लगभग एटलीस्ट 7 to 8 hours का नींद कंप्लीट करना है हर रोज़, तो वो सर्कल जो होता है वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। अन टाइम में सोना या नींद का कमी हो जाना या अन टाइम पे हम लोग प्रॉपर स्लीप पैटर्न को फॉलो नहीं करना। फोर्थ चीज़ तो ये हो सकता है कि हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कि हम कितना टाइम अपना वर्क प्रेशर का वजह से अपना हेल्थ को ध्यान ना दे दे कि बहुत टाइम एक ही जगह पे बैठे रहे। ये छोटे छोटे चीजें बहुत मायने रखते हैं। हमें लगता है कि ये छोटे छोटे चीज में क्या ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत जन लोग हैं जो ओवर ईटिंग करते हैं, तो थोड़ा दिन में उनको पता नहीं चलता, स्पेशली जेंट्स में तो उनको लगता है थोड़ा सा ओवर वेट होते हैं, बट जब वजन ज़्यादा ही बढ़ने लग जाता है तो उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की वजह से डायबिटीज या हार्ट अटैक या हार्ट कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर्स कॉमनली आ जाते हैं, बट पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हम इन प्रॉपर डाइट से शुरू करे थे और कहाँ हमारे कार्डियक डिसऑर्डर।

0: डेवलप होने में हमने उसको कभी वक्त ही नहीं दिया।
1: जी
0: तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को इसी को साथ हम कनेक्ट करते हैं कि आप अपना जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर नहीं करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तब तक ये लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ बढ़ते जाएगा।
1: जी
0: और जितने हमारे पास फैसिलिटी जनरेशन के अनुसार डेवलप्ड होते जा रहे हैं, उसके अनुसार हमारा जो बीमारियां भी साथ ही साथ में
1: बढ़ती जा
0: बढ़ते
1: रही
0: जा
1: है।
0: रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या योग केवल व्यायाम है या संपूर्ण जीवन शैली को बदलने का माध्यम भी है?
0: बिल्कुल भी नहीं, योग बिल्कुल भी व्यायाम नहीं है, योग एक जीवन शैली है। जब भी मुझसे लोग पूछते हैं कि योग और व्यायाम के बीच में क्या फ़र्क है, तो
1: जी
0: सबसे पहले तो ये फ़र्क है कि हम जब भी आसन करते हैं तो हमेशा से ध्यान पूर्वक करते हैं, आसन योग का एक हिस्सा है। तो इसीलिए जब भी हम योग का कोई भी पार्ट, मतलब ध्यान ध्यान हो या मेडिटेशन हो या प्राणायाम हो या आसन करते हो या
1: जी
0: प्रत्याहार को फॉलो करते हो, कुछ भी करे तो ध्यान पूर्वक करते हैं, ये चीज़ हमेशा से हमें याद रखना चाहिए। और एक्सरसाइज जब भी करते हो तो इतना ध्यान पूर्वक करना या अवेयरनेस के साथ करना ज़रूरी नहीं होता है।
1: जी
0: दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी हम आसन करते या प्राणायाम करते तो हम ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, यानी कि सांसों की गतियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पे वैसी चीज़ें को हम महत्व नहीं देते हैं। यही बहुत कॉमन डिफरेंसेस है। और वो योग केवल शारीरिक से ही संबंधित नहीं है, वो हमारे
1: जी
0: मानसिक, हमारे कैसे सोच विचार होना चाहिए, हम कैसे चीज़ों पे बदलाव ला सकते हैं,
1: जी
0: हम हमारा सही गलत का डिसीजन कैसा होना चाहिए, ये सब मिला के हमारा एक जीवन शैली होता है योग।
1: जी
0: तो योग और एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फर्क होता है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ रुकना चाहूँगी, कॉल आ रहे ले लेते हैं।
0: जी
1: हेलो हेलो,
2: नमस्ते बहन जी,
1: नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
1: जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, बताइए सवाल रखिए सर।
2: योगा के बारे में पूछना है, कोई आदमी एकदम अस्वस्थ है, असमर्थ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: जी, अगर आप अस्वस्थ है या असमर्थ है या आपको लगता है कि आप खड़ा होकर कोई आसन या ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम ऐसी चीज़ें जो आप लेट के भी कर सकते हैं या बैठ के भी कर सकते हैं, पर सही तरीके का प्राणायाम सही लोग से आप सीख के करिए। जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम लोग करते तो हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, पर अगर गलत करते हैं तो उसका प्रभाव भी गलत पड़ेगा। अगर आप हाइपरटेंशन है या रक्तचाप आपका बढ़ा हुआ है या अस्थमेटिक है, मतलब जहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे लोग कपालभाति वाला प्रैक्टिसेस, जिसमें ब्रीदिंग का प्रैक्टिसेस अभ्यास ज्यादा फास्ट हो, ऐसे प्राणायाम ना करें। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है, उसका लाभ बहुत अच्छा है। तो ऐसा अभ्यास आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, पर सही तरीके से सीख के फिर जरूर करें।
2: इतना सुंदर सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, भगवान आप लोगों को निरोग रखे।
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका। डॉक्टर साहब, आजकल मधुमेह यानी डायबिटीज एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुका है, ऐसे में इसके नियंत्रण में योग की क्या भूमिका है?
0: कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बन चुका है, बट अगर हम लगातार प्रैक्टिस और अपना लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो हम
1: जी
0: इससे ज़रूर मुक्त होकर आ सकते हैं। मैं ये आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप ओवरकम कर लेंगे, बिल्कुल आपको शुगर का ये नहीं होगा, बट आपने जो शुगर के लेवल्स होते हैं, मतलब खाने खाने से पहले या खाना खाने के
1: जी
0: बाद, उसको आप जनरली मेंटेन करके हमेशा से रख सकते हैं। तो हमारा एज अ योग और प्राकृतिक चिकित्सा जो हमारा फील्ड है, तो हम कोई भी बीमारी को एज अ होल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई डायबिटीज़ पेशेंट आता है तो उसको एज अ होल देखते हैं कि क्यों उनको डायबिटीज़ कैसे शुरू हुआ था। अगर उनको शुरू हो गया है तो उनको हम शारीरिक रूप से या मतलब उनको पौष्टिक आहार में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल डाइट हम क्या प्लान कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या आसन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि वक्रासन बहुत महत्वपूर्ण होगा, मंडूकासन महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे उनको दो दो बीमारियाँ होती है, फॉर एग्जांपल घुटना दर्द होते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि वो ऐसे पेशेंट आसन कर सकते हैं कि नहीं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली आसन हम सजेस्ट करते हैं। और उनका स्लीप पैटर्न क्या है, बहुत सारे लोग को ये आदत होता है कि रात को देर खाना खाना, 10 बजे तक, फिर सोते हैं वो आधा घंटे में, तो वो एक हमारा एक सर्कैडियन रिदम होता है। जैसे पुराना जमाने में हम बोलते कि दिन का 2 बार खाइए, और जब भी आप खाना खाते हैं तो सनसेट का पहले खा लीजिए। तो मैं ये तो सलाह दूंगी।

0: सनसेट के पहले नहीं खाते हैं तो एटलीस्ट 7 साढ़े 7 तक अपना
1: जी
0: डिनर टाइमिंग ख़त्म कर दीजिए, फिर 10 बजे से पहले आप अपना बिस्तर में सोने चले जाइए। इससे अगर ऐसे चेंजेस थोड़ा थोड़ा करें, क्योंकि यूजुअली जब चेंजेस करने बोलते हैं या
1: जी
0: बर्ताव लाने बोलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, बट जब चेंजेस को थोड़ा थोड़ा करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो
1: जी
0: इम्प्रूवमेंट ज़रूर हमें दिखाई देता है।
1: जी
0: साथ ही साथ में इसको हम बहुत आराम से ओवरकम कर सकते हैं, कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज़ हो गया, मोटापा हो गया, या कोई भी तरीके से बीमारी हो, एक दिन में नहीं सोल्यूशन है
1: जी
0: वो। जो चेंजेस आपने
1: अभ्यास से ही हो
0: जी
1: जी
0: अभ्यास से होगा और बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए आपको उतना पेशेंस लेवल को भी रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। बहुत सारे लोग ऐसे आज करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर 1 हफ्ता छोड़ देते,
1: जी जी
0: वैसे ही इस पर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा।
1: जी डॉक्टर साहब एक कॉलर है, ले लेते
0: जी
1: हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
1: जी, सवाल रखिए।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, देखा ये गया है कि ये शुगर, बीपी और मोटापा ये हम लोगों की ही खुद की देन है।
0: जी जरूर।
2: पहले पहले हम लोग कुछ दूर के लिए बस पकड़ने के लिए दूर तक थोड़ा पैदल चलना पड़ता था, और अब क्या हो गया, घर से बैठते हैं बाइक पे, कार में तो चले जाते हैं और आ जाते हैं, जिससे क्या फैमिली की पोजीशन क्या होती है, वर्क करने की खत्म हो जाती है, पैरों की मांसपेशियां, मोटापा बढ़ जाता है, बीपी, शुगर। तो ये इस चीज से बचने के लिए हम लोग, चलो सुविधा हो गई है, तो अब ऐसा कौन सा योग अपनाएं, ऐसी घर बैठ के ऐसी एक्सरसाइज करें जो चलना भी हो जाए। घर में वॉक तो होती नहीं है, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आजकल छोटे छोटे लोगों को फ्लैट है, जिसका गांव है दूर दूर तक, उनको तो इतनी परेशानी नहीं कभी हमने सुनी। तो
0: जी
2: ऐसा कोई हमें उपाय बताइए, ऐसा रास्ता बताइए, जिससे सभी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को लाभ हो और हम भी इसका लाभ उठाएं।
0: जी ज़रूर। जैसे कि आपने बोला था कि अभी की जनरेशन में बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल चुकी है, तो हम उतना टाइम अलग से नहीं निकाल पाते हैं वॉकिंग के
2: एक
0: लिए।
2: चीज साथ में, सॉरी, एक चीज मैं साथ में और जोड़ देता हूँ। पहले आटा चक्की होती थी, मसाला पत्थर पे पीसते थे और वर्क करते थे, हाथ से कपड़े धोते थे, अब सारी सुविधा हो गई है, तो इससे काफी महिलाओं को तो ज्यादा परेशानी है मोटापे की और कमर में दर्द, इस तरह से कमर के दर्द की तो खास परेशानी होती है।
0: जी, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जितना टाइम हम लोग अपने काम, जैसे कि सोचिए अगर हमारे पास बहुत कपड़ा है तो हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं, तो अगर सोचिए हमारे पास 4 कपड़ा है तो हम खुद से धो सकते हैं, ऐसे पर पहले इनिशियल स्टेज में हमने ऐसे बर्ताव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डेली डेली ऑफिस जाते हैं तो आप गाड़ी पे जाते हैं, तो एक दिन सैटरडे या संडे के दिन हम सोचेंगे कि हम घर के आसपास की कोई दुकान में शॉपिंग करने जाते हैं, तो उस दिन हम गाड़ी का इस्तेमाल ना करते हुए चल के वापस आके यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करके ही कम करना करके नहीं है, अगर आप अपना भोजन सही टाइम पे लेते हैं और सही क्वांटिटी में लेते हैं तब भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जैसे कि मैं अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ कि आप हफ्ते का एक दिन उपवास रखिए, कोई भी एक दिन जिसके लिए आप उस दिन ऑफिस ना हो या उस दिन आपको लगता है कि आज रेस्ट ले सकते हैं, तो उस दिन आपको उपवास रखना है। उपवास रखने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन कुछ नहीं खाए,
1: जी
0: आप फल और उबली हुई सब्जियां जितना खाना है आप खा सकते हो और भर पेट पानी पी लीजिए, उसके सिवाय आप कुछ भी मत खाइए। उससे क्या होता है, आप एक अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं कि आप अपना वजन या अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो मेरे से आपको यही सलाह रहेगा कि आप जितना हो सकता है अपने तरफ से, जैसे कि आपको लगता है कि पास में ही है तो आप चल के चले जाइए, आपको लगता है कि थोड़ा मन कहीं जाना है, आपको कहीं पे विजिट करना है तो पास में है, जितना हो सकता है आप कोई भी व्हीकल का
1: जी
0: इस्तेमाल ना करें। कोई भी काम को अगर लगता है कि आपको बाद में टहलाएंगे या मतलब किसी का इस्तेमाल करके करेंगे तो ऐसा मत सोचते हुए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो खुद से करने का कोशिश करें।
1: बहुत अच्छी
0: ऐसे
1: बात
0: छोटे
1: कही।
0: छोटे काम को आप करते लग जाएंगे तो आपको वो आदत लग जाएगा। यूजुअली तो हमें आदत नहीं है इसीलिए मुश्किल हो रहा है, हम एक गलत लाइफस्टाइल को हम लोग चूज करके रखें। थोड़ा थोड़ा इनिशिएट करते रहिए। बहुत सारे घर में ऐसे होते हैं कि वाइफ हाउस वाइफ घर पे रहते हैं फिर भी उनको मेड का ज़रूरत होता है, ऐसी जगह में वो मेड को अवॉइड कर सकते हैं, लिमिटेड काम का ही इस्तेमाल मेड से करवा सकते हैं, मेजर काम जैसे कि झाड़ू मारना या पोछा लगाना वो खुद कर सकते हैं। ये उनको हेल्प नहीं करना ऐसा हमारा मोटिव नहीं है, ताकि

0: उनका वजन कट सके या वो अपने आप को एंगेज रख सकते, ये हमारा मोटिव है।
1: आपके सवालों के जवाब मिल चुका होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक कॉलर है और है, ले लेते हैं।
0: जी हाँ,
1: हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी जी, सवाल पूछिए सर।
2: तो मेरा डॉक्टर साहब साहब से तो प्रश्न ये है
1: जी,
2: कि कई जो शारीरिक रूप से, जैसे कि जिनके पास हाथ पैर नहीं है, एक तो ये, और जो ब्लाइंड लोग हैं जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए योग का क्या रास्ता है, वो किस तरह से योग कर सकते हैं?
0: जैसे कि आपने एक उदाहरण बोला है जिसके पास हाथ पैर नहीं है, और दूसरे एक एग्जांपल बोला है जिसके पास आंख नहीं है, मतलब ये उनको दिखता नहीं है।
2: दिखता नहीं है
0: हाँ,
2: बिल्कुल।
0: तो ये एक एक बीमारी नहीं है, बट उनकी उनको इस आसन या कोई चीज़ को समझाना या महसूस कराना ज़रूरी होता है। अगर
2: जी
0: उनको आप सही रूप से वो चीज़ को सिखा दे, फॉर एग्जांपल अनुलोम विलोम उनको नहीं सब समझा दिखा सकते हैं, बट आप उनको
2: वही वही
0: समझाते सकते हैं ना इंस्ट्रक्शन की वजह से, कि
2: जी
0: आपको आपकी बाएं तरफ से सांस की गति को लेना है और दाएं तरफ से छोड़

0: एक बीमारी नहीं है, बट उनकी उनको इस आसन या कोई चीज को समझाना या महसूस कराना जरूरी होता है। अगर उनको आप सही रूप से वो चीज को सिखा दे, फॉर एग्जाम्पल अनुलोम विलोम उनको नहीं सब समझा दिखा सकते हैं, बट आप उनको
1: वही
0: समझाते
1: जी
0: सकते हैं ना इंस्ट्रक्शन की वजह से कि आपको आपकी बाएं तरफ से सांस की गति को लेना है और दाएं तरफ से छोड़ना है, फिर दाएं तरफ से लेते हुए बाएं तरफ से छोड़ना
1: जैसे
0: है।
1: उनको अगर मानो कि वो सोचते हैं कि हम भी इस तरह से करें, जैसे मानो कि सूर्य नमस्कार है, लेकिन
0: जी
1: जो चलो ब्लाइंड लोग तो चलो सूर्य नमस्कार तो कर सकते, वो तो खड़े भी हो सकते हैं।
0: जी
1: जैसे मानो कि जो जिनके साथ हाथ पैर नहीं है, वो खड़े तो नहीं हो सकते उस तरह से, तो
0: जी
1: वो सूर्य नमस्कार को कैसे मतलब कर
0: उस
1: सकते
0: तरह
1: हैं?
0: वो लोग जो खड़े नहीं हो सकते तो उनको ऐसी दिक्कत है, तो उनको प्राणायाम और का सजेशन
1: जी
0: और ध्यान का सजेशन हम ज़्यादा देते हैं, बिकॉज जब वो खड़े नहीं हो पाते तो उनको हम आसन नहीं करवा पाएंगे।
1: जी
0: बट ऐसे
1: जी
0: बहुत सारे आसन हैं जो बैठ के कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो लेट के कर सकते हैं। तो अगर उनको पेट का चर्बी कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए करना है, तो वो अर्धहलासन कर सकते हैं, और उनको अगर पीठ दर्द है उसके लिए करना है तो मकर आसन कर सकते हैं। ऐसे बहुत
1: और
0: सारे
1: जी, जैसे कि मानो कि जैसे कि जिन जिन की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा योग आसन कर सकते हैं, जिनकी ताकि आंख तेज हो, जो कई बार ऐसे ही होते हैं जिनको कम दिखाई देता है, तो उनके लिए भी, या वो भी अपनी रोशनी बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा जो है योग
0: जी जैसे कि अगर
1: प्राणायाम?
0: बोल रहे हैं कि उनको बहुत कम दिखाई देते, तो मैं आपको ये सजेशन दूं कि वो एलोपैथी और डॉक्टर को पहले तो दिखा दे कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर मेरे से सजेशन पूछेंगे तो मैं उनको बोलूंगी त्राटका। त्राटका
1: अच्छा
0: योग के एक ऐसे अभ्यास है जिसमें हम लोग आई का एक्सरसाइज सिखाया जाते हैं, हम उसको कैसा
1: जी
0: स्ट्रेंथनिंग करना, आई का जो मसल होता है वो थोड़ा वीक ऑन हो जाता है क्योंकि डेली डेली यूज करते हैं, फोन का
1: जी
0: लाइट बहुत प्रेशराइज देखते
1: जी
0: हैं तो उस तरह बहुत वीकन
1: जी
0: हो जाता है। तो हम त्राटका सिखाते हैं, त्राटका में हम एक्सरसाइज सिखाते हैं, उसके बाद हमारा आईज का स्ट्रेंथनिंग कैसा करते हैं वो एक अभ्यास को सिखाया जाता है। आप इंटरनेट के दौरान भी, वैसे चीज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक वेबसाइट है उसमें भी बहुत सारी
1: जी
0: वीडियोस डाला हुआ है, वैसे चीज़ों को आप वहाँ देख के सीख सकते हैं।
1: जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद
2: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, आजकल उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से पीड़ित लोगों के लिए कौन कौन से योगासन विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं?
0: अगर हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं या कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर के लिए बात करते हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगी कि ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग, हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग, आप कोई भी आसन के साथ हम ब्रीदिंग जब जोड़ के करते हैं
2: जी
0: जिसमें हमारा सिंपथेटिक एक्टिवेशन जो बॉडी में होता है वो कम होकर पैरासिंपथेटिक एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, वैसे स्थिति को हम हमेशा से प्रमोट करते हैं। उसमें हम कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करवाते हैं
2: जी
0: क्योंकि उससे हमारा ब्लड प्रेशर रेट बढ़ सकता है।
2: जी
0: भ्रामरी हो गया, ओम का उच्चारण हो गया, या किसी प्रकार का उच्चारण हम लोग कर दिए, अनुलोम विलोम हो गया, और साथ ही साथ में हमने भुजंग आसन करवा दिए जिसमें हमारा चेस्ट एक्सपैंड होता है और हमारा लंग कैपेसिटी बढ़ता है, इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर के जो वैल्यूज हो जाते हैं वो
2: जी
0: कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि मैम हमने बहुत साल से दवाई ले रहे हैं, साथ ही साथ में हम क्या करें जिससे हमारा बीपी हमेशा से कंट्रोल वैल्यू में रहे,
2: जी
0: तो हम हमेशा से उनको प्राणायाम पे प्रेशर देते हैं ताकि वो उनका रूटीन बन जाए और उससे उनको लाभ भी मिले।
2: जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। डॉक्टर साहिबा, मोटापा आजकल एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है, इसे नियंत्रित करने के लिए योग और प्राणायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है?
0: जी देखिए, बहुत एक इंग्लिश प्रोवर्ब है जिसमें बोला जाता है कि मोटापा रन्स इन द फैमिली, इट इज़ नॉट रन्स इन द फैमिली, इट इज़ बिकॉज नो वंस इन द रन्स इन द फैमिली। ऐसे ही मोटापा जेनेटिक डिसऑर्डर है करके माना जाता है, जहाँ पे मेरे नाना को था तो नाना से
2: जी
0: मेरे पापा को आया, या मदर को आया, फिर मुझे आया। ऐसे ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं जिसमें आपका प्रॉपर 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी होता है, 7 से 8 घंटे का नींद होता है, प्रॉपर पर डाइट पौष्टिक आहार जिसपे फल वेजिटेबल्स और सही रूप नियमित रूप से आप खाना का सेवन करते
2: जी
0: हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रयोग करते हैं, तो आपको मोटापा होना ज़रूरी नहीं है।
2: जी
0: तो ये एक बहुत गलत प्रवर्ब है जिसको हम लोग हमेशा से मानते आते हैं, तो इसीलिए मोटापा बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब आप मोटापा छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक हर जगह मोटापा देख
2: जी
0: सकते हैं, बट मोटापा आने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल आपका वजन बढ़ गया है, उससे
2: जी
0: क्या हो जाता है, आपका नी में प्रेशर पड़ रहा है या एंकल्स में प्रेशर पड़ रहा है, बिकॉज आपका जो बॉडी के लोअर पार्ट

0: है वो कमजोर है और ऊपर पार्ट में वो ज्यादा मोटापा बढ़ चुका है। और मोटापा यूजुअली दो प्रकार के होते हैं, एक आके पेट पे आने वाला मोटापा और
1: जी
0: दूसरा है कि आपके जो बटक्स रीजन में जो मोटापा बढ़ता है वो एक मोटापा। यूजुअली जो पेट में आने वाला मोटापा सबसे ज्यादा डेंजरस और खतरनाक माना
1: जी
0: जाता है, बिकॉज उस पे एडिपोज टिश्यूज जो फैट टिश्यूज है वो बढ़ जाता है, फिर वो इंसुलिन सेंसिटिविटी करने की कोशिश कर रहता है, जिसकी वजह से हमें फिर से मधुमेह होने का चांसेस बढ़ जाता है। और साथ ही साथ में जब भी मोटापा आता है तो हम अपना फिजिकल एक्टिविटी इतना अच्छे से कर नहीं पाते हैं, थोड़ा सा लेजीनेस लगता है, बहुत सारे लेथार्जिक यानी कि सुस्त लग जाता है, कोई
1: जी
0: काम करने में एक्टिविटी नहीं आती है। तो डिप्रेशन एक मेजर कॉज हम ओबिसिटी का मतलब कॉम्प्लिकेशन केसेस में देख सकते हैं कि लोग हमें छेड़ते हैं, हमारे पास कोई भी कपड़ा फिट नहीं होता है हमारे
1: जी
0: बॉडी में, या मतलब हम उतने सुंदर नहीं लगते हैं, बिकॉज ऐसा हमारे भीतर ही भीतर एक फीलिंग आने लगता है। तो बहुत सारे इल कॉसेस बहुत ज़्यादा है, और जब भी आप मोटापे के शिकार होते हैं तो लोग को लगता है कि वजन घटना भी बढ़ना
1: जी
0: जितना आसान था घटना भी उतना ही आसान रहे, बट ऐसा होता नहीं है। घटना हमारे लिए बहुत मेहनत का काम बन जाता है, बिकॉज हम कोई भी काम करते हैं तो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि
1: जी
0: आज करते हैं, आज बारिश आ गया, आज मेहमान आ गया, आज पार्टी है, आज संडे, तो हमेशा से हम एक
1: जी
0: रीज़न देने लगते हैं। तो ये चीज़ को अवॉइड करते हुए योग अभ्यास बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। अगर आप जितने भी मैंने लोग को देखा है, बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास जो बोलते हैं मैम मुझसे नहीं होगा फिजिकल एक्टिविटी, पर जब भी वो लोग अभ्यास अच्छे तरीके से करते हैं तो वो ज़रूर अपना वजन अच्छे तरीके से कम कर
1: कम कर
0: सकते हैं।
1: पाते हैं।
0: ऐसे भी एक लोग
1: डॉक्टर साहब, रुकना चाहूंगी, कॉलर ले लेते
0: जी
1: हैं।
0: ज़रूर
1: हेलो हेलो,
2: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं?
2: मॉर्निंग मैम, मैं केशव बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैम
1: जी जी सवाल पूछिए सर।
2: मैम मेरा सवाल ये है, पहला सवाल तो ये, जैसे कि ऑफिस में जैसे मैम काम करते हैं लैपटॉप पे, वो बैठे रहते हैं पूरा दिन, और फिर उसके बाद जैसे मेरी अपनी खुद की शॉप है, तो मैं भी अगर मैं पूरा दिन बैठ रहता हूँ, काम मेरा वैसा रहता है, तो इसमें पेन होता है कमर में, तो उसके लिए मैं क्या योग करना चाहिए? दूसरा
0: जी
2: सवाल ये, जैसे कि लैपटॉप पे काम करते, फोन चलाते पूरा दिन, जैसे आंखों के लिए हम क्या योग करें जिससे उसको आराम मिले? और जैसे मैं पहले मैं मॉर्निंग में डेली योग कर वो मतलब खेल कूद करता था और साइकिलिंग भी करता था और क्रिकेट भी खेलता था, उस टाइम मेरा ठीक था। अब मैम पेन कुछ ज्यादा ही रहता है मैम कमर में, क्या ये सोने से भी हो सकता है मैम?
0: जी ये ज़रूर ठीक हो सकता है। आप अगर योग करते हैं या आप जानते हैं तो सबसे अच्छा आसन है हमारा सेतु बंदासन, जिसको हम ब्रिज पोस्चर बोलते हैं, और
1: जी
0: मरकट आसन, ये दोनों से आपका कमर एकदम ठीक हो सकता है। बट आपने जब ये सवाल पूछा है कि हम वर्किंग है मतलब काम करते हैं तब हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक छोटा सा ऐप बनाया है जिसको बोलते हैं वाइब्रेक। आप मिनिस्ट्री ऑफ वेबसाइट आयुष की वेबसाइट में जाएंगे तो वाइब्रेक का मतलब है योगा ब्रेक, मतलब जैसे कि हम ऑफिस में बोलते हैं कि चाय ब्रेक ले लेते हैं, समोसा ब्रेक ले लेते हैं, उसी तरह है ये वाई ब्रेक। ये स्पेशली उनके लिए बना है जो काम करते हैं, कि बहुत सारे टाइम में लैपटॉप में बैठे रहना या एक ही
1: जी
0: स्थिति में बैठे रहना वो उठ नहीं पाते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, जो भी सुन रहे हैं उनके लिए ये शायद लाभदायक जरूर हो सकता है। उसमें पहला
2: एक
0: चीज
2: सवाल
0: है
2: मैम और, अगर फोन आते हैं तो जैसे दूर तक जाती है, तो क्या उसको दूर तक आग देखते हैं हम, तो उसके लिए क्या लाभदायक होता है?
0: मैं समझी रही हूँ सर, आप प्लीज रिपीट कीजिए।
2: मैम जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, तो जैसे दूर की नजर मैम जैसे हम रेगुलर देखते हैं, जैसे आंखों में भी तो रोशनी पड़ती है सूरज की, तो दिखती है नहीं, कंटिन्यू अगर देखते रहे सूरज को भी, अगर सामने फेस पड़ रहा है पतंग उड़ाते हुए?
0: तो अगर आप रेगुलरली या कंटिन्यूसली करते रहेगी तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप कुछ चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं और आप प्रेशर लगा रहे हैं वो चीज़ को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल रात को जब लाइट ऑफ करके फ़ोन को देख रहे हैं, आपको नींद आ रहा है, जब फिर भी आप ज़बरदस्ती उस पर प्रेशर लगा रहे हैं वो लाइट के साथ अपने फ़ोन देखते, उसी तरह ये सूरज की किरण को आपने जब कंपेयर किया तो प्रेशर अगर आप लगा रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को ना करें। और दूसरी बात है, जब आपने बोला था कि आपका कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है, बहुत सारे लोग को सिस्टम में बैठने की वजह से हाथ सुन्न हो जाता है या उंगलियां सुन्न हो जाती है, ऐसे लोग वाइब्रेक करें। एक 5 से 6 मिनट का एक अभ्यास है जो
1: जी
0: ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल बना के दिया है, जो हम कुर्सी में बैठ के ही कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशल जगह की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि दरी या योगा मैट की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह पर बैठे बैठे रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपकी गर्दन दर्द, कमर दर्द,

0: यस उससे मिली जुली जो भी प्रॉब्लम होते हैं जिसकी
1: जी
0: वजह से आप बहुत देर सिस्टम में बैठ के आपको जो दिक्कतें आती हैं उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वाई ब्रेक यानी कि योगा ब्रेक।
1: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। जैसे आजकल महिलाओं में भी ज़्यादातर कमर की समस्या ज़्यादा रहती है, तो योगा कितने, मतलब जो लोगों को कमर की समस्या है तो उनको कितने देर तक योगा करनी चाहिए, कितने समय तक?
0: मैं तो ये बोलूँगी कितना देर तक करने से ज़रूरी है कि कितने अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि
1: जी
0: लोग बहुत जब भी कोई अभ्यास करने बोलते हैं तो टीवी देख के करते हैं, फ़ोन में कान में फ़ोन रख के किसी से बात करते हुए करते हैं, तो ध्यान यहाँ पे नहीं है। आप अवेयरनेस क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं
1: जी
0: ये नहीं रहता है, तो मैं ये बोलूँगी रोज़ाना 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, और जो अभ्यास करते हैं भले आप 2 अभ्यास करें या 3 अभ्यास करें या 4 करें, बट जब भी करते हैं उस पे पूरे ध्यान पूर्वक होके हुए करें ताकि उसमें ही आपको लाभ रहेगा। बहुत
1: जी
0: सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि हम लोग घुटना के लिए करवाते हैं बट वो किसी से फ़ोन में बात करते हुए करते हैं या घर के मेंबर से चिट चैट करते हुए करते हैं, तो अपने प्रैक्टिस हट जाता है।
1: जी
0: हम काउंट करने सिखाते हैं कि आप 1 से 10 तक गिनती करिए ताकि आपको पता चले कि आप आज कितना कर रहे हैं और कल कितना कर
1: जी
0: सकते हैं। लोग गिनती भूल जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने 100 बार कर दिया, बट बेसिकली वो 10 ही बार करे होंगे। तो जब भी कोई अभ्यास करते हैं उसको कंटिन्यूसली करिए, दिन में 2 बार करिए और
1: जी
0: हिसाब करके अपने ध्यान देके करिए, तो ज़रूर आप उसका लाभ उठा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहिबा, समय के अभाव के कारण यहाँ रुकना चाहूँगी, सवाल तो बहुत सारे हैं, तो जाते जाते जो श्रोताएं हैं सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
0: मैं सभी श्रोताओं को ये सलाह दूंगी कि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित योग, संतुलित भोजन, रोजाना थोड़ी शारीरिक गतिविधियां तनाव को कम करता और सकारात्मक सोच अपना पर हम स्वस्थ, खुशी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। रोजाना हमेशा से योग को अपने जीवन शैली में अपनाइए और हमेशा से अपने जीवन को स्वस्थ और
1: रोगमुक्त
0: खुशहाली
1: बनाए।
0: बनाइए।
1: जी बहुत अच्छी
0: धन्यवाद।
1: बात कही डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक
1: तो
0: यू।
1: श्रोताओं, हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का विषय था योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधी रोगों का प्रबंधन। अतिथि थी मेडिकल ऑफिसर योगा एंड नेट्रोपैथी डॉक्टर नंदिनी। तकनीकी सहयोग दिया बैजू मैथ्यू ने। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी लक्ष्मी व प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी

0: निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में

0: अमरीका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पांचवीं पीढ़ी का

0: अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
3: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
2: स्पीकिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सूरत, द प्राइम मिनिस्टर प्रेज द सिटी स्पिरिट एंड इट्स ट्रांजिशन इन टू अ ग्रीन सिटी। ही लॉडेड सूरत सर्क्यूलर वाटर इकोनॉमी मॉडल एंड द वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव व्हिच हैज टर्न्ड इनटू अ मास मूवमेंट ओवर द लास्ट 12 इयर्स। The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from

श्रोताओ, सुगम संगीतीय कार्यक्रम में अभी आप भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में इब्राहिम अश्क का कलाम सुन रहे थे और अब सुनिए चंदन दास की स्वर में बशीर बद्रा की रचना।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रद्धा कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर के गाए मधुमति फिल्म के एक गीत से। शैलेंद्र के बोल को संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने।

0: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़े।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: श्रोताओं, आइए सुनते हैं फर्ज फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

इस गीत के साथ ही आज का हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:10 होने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने 7 साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वही लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
2: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
3: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
3: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
2: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
3: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिली। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
2: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
3: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथ ही लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
2: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
3: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
2: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को

0: आप देखते हैं तो क्या लगता है?
1: सफाई के बाद मनरामा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
0: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
1: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनरामा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
0: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
1: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
0: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
1: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
0: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
0: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
1: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
0: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
1: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
0: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
1: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
0: आप जिस तरह से यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद के पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत।

0: पद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:21 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए कुछ देशगान।

0: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे वाईफाई, सुनना मेरी बात।
5: हाँ भाई, बोलने का ना।

इस देशभक्ति गीत के साथ ही आज का हमारा देशगान अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुधा रघुनाथन का गायन सुनवाने जा रहे हैं। इनके साथ वायलिन पर के श्रीनिवासन, मृदंगम पर तिरुवरुवर विद्यानाथन, घट्टम पर एस कार्तिक ने संगति की है। तो लीजिए, पहले प्रस्तुत है सुधा रघुनाथन का गाया राग नाटका प्रिया, जो आदि ताल

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अब सुनिए सुधा रघुनाथन का गाया राग भीम पलास, जो जंपा ताल में निबद्ध है, कृति अन्नामाचार्य की है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं सुनीति चौहान दिव्या कुमार के गाए फनी खान फिल्म के गीत से। इरशाद कामिल के बोल को संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओ अब सुनिए फीवर फिल्म का एक गाना टोनी कक्कर और नेहा कक्कर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नेहा कक्कर की आवाज में KGF चैप्टर 1 फिल्म का एक गीत। इस गीत को लिखा था रश्मि विराग ने व संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। अब सुनिए तनिष्क बागची के संगीत निर्देशन में तैयार शब्बीर अहमद का लिखा सिम्बा फिल्म का एक गाना। गायक कलाकार है नेहा कक्कर, मीका सिंह और कुमार सानू

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है वजह तुम हो फिल्म से। गायिका है नेहा कक्कर और इस गीत को लिखा है कुमार ने।

श्रोताओं, अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की स्वरों में सिर्फ तुम फिल्म का एक गाना।

श्रोताओं, इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। कार्यक्रम कशिश को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बार बार देखो का ये गीत। गीतकार है अमरिक सिंह और कुमार, संगीत प्रेम हरदीप का है तथा गायक कलाकार है अमर, अर्जीश बादशाह और नेहा कक्कड़।

टोनी कक्कर और नेहा कक्कर को अभी आपने फिल्म लुका छुपी में सुना। गीत व संगीत टोनी कक्कर का था। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अमित कुमार के युगल स्वरों में फिल्म बेटी नंबर वन का ये गाना। माया गोविंद और देव कोहली के गीतों को संगीत से सजाया है विजू शाह ने।

लीजिए अब सुनिए, बादशाह फजल पुरिया, सुकृति कक्कर और नेहा कक्कर की मिलीजुली आवाज़ों में कुमार की गीत रचना। संगीत अमाल मलिक का है तथा फिल्म का नाम है कपूर एंड सन्स।

लीजिए अब सुनिए अंकित तिवारी और नीति मोहन को फिल्म मिस्टर एक्स में। अभिहेंद्र कुमार उपाध्याय के गीत को संगीत से सजाया है अंकित तिवारी ने।

लीजिए अब सुनिए रॉकचक कोहली के संगीत निर्देशन में तैयार मनोज मुद्दशिर की गीत रचना। गायक है अरमान मलिक तथा फिल्म का नाम है वाइट इट इंडिया।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाज़ों में फिल्म सत्यमेव जयते का ये गीत। गीतकार कुमार तथा संगीत रॉकचक कोहली का है।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल के गाए फिल्म फरेब के एक गीत के साथ। गीतकार शाहिद कादरी तथा संगीत अनु मलिक का है।

अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल स्वरों में सुनते हैं समीर की गीत रचना। संगीत नदीम श्रवण का है तथा फिल्म का नाम है ए दिल।

लीजिए अब सुनिए, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में तैयार समीर की गीत रचना। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। गायक कलाकार है उदित नारायण और अलका याग्निक।

लीजिए अब सुनिए फिल्म बरसात का ये गीत। गायक कलाकार है कुमार सानू और अलका याग्निक। गीतकार समीर तथा संगीत नदीम श्रवण का है।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवाते हैं हेमेश रेशमिया का संगीत। गीत रचना समीर की है तथा फिल्म का नाम है वह लाइफ हो तो ऐसी।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम गीत अतीत। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सितमगर का ये गाना। मजरू के लिखे इस गीत को सुरों में पिरोया है राहुल देव बर्मन ने। गायक कलाकार है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथी।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को फिल्म सोने का दिल लोहे के हाथ में। अरशद भोपाली के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है उषा खन्ना ने।

हुसना लाल भगत राम के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं मजरू की गीत रचना। फिल्म का नाम है शमा और परवाना। गायक कलाकार है सुरैया और मोहम्मद रफ़ी।

लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में सुनते हैं हसरत जयपुरी की गीत रचना। संगीत शंकर जयकिशन का है तथा फिल्म का नाम है श्री 420।

0: हम
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं मजरू की गीत रचना। फिल्म का नाम है शागिर्द तथा गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म शेरा में। हसरत जयपुरी के बोल को सुरों में ढाला है रामलाल ने।

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा, दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आरंभ होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

पहला फरमाइश हमने लिया है फिल्म दुश्मन का, जो हमें मेरठ से दीर्घदर्शन और कविता गौड़ ने भेजा था। गायक है जगजीत सिंह, गीतकार आनंद बख्शी तथा संगीत उत्तम सिंह का है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

मध्य प्रदेश से ब्रिजेश विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा कर्मा और आशीष विश्वकर्मा सुनना चाहते हैं फिल्म बादल का ये गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत समीर के है तथा संगीत अनु मलिक का है।

फिल्म जंगली के लिए हमें फरमाइश की है महाराष्ट्र से PS नाहरकर, निर्मला विशाल और सोपान ताड़क की। आइए सुनते हैं मुकेश और आशा भोसले का गाया ये गीत। गीत शैलेंद्र के है तथा संगीत शंकर जयकिशन का है।

राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान सुनना चाहते हैं फिल्म दोस्ताना का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी के साथ किशोर कुमार ने।

आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: as new T20I captain, replacing Suryakumar Yadav. Moreover, Tilak Verma has been named as vice captain. BCCI has also included young sensation Vaibhav Suryavanshi in the squad for the first time, following his great IPL 2026 season scoring highest runs. Prince Yadav has also been added to the squad. The team was announced after a meeting of Team India's Men's Selection Committee, led by Chief Selector Ajit Agarkar and BCCI Secretary Devajit Sekhia, for deciding the squad for the tours of Ireland and England and the Asian Games in Japan, as well as India A's tour of Sri Lanka multi-day games at the BCCI headquarters in Mumbai today. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon, Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Takamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahe till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ

0: 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले

0: 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाले

0: प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर हो सकती है और समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 9 जून तक समुद्र में ना जाए। जन सेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में भारी वर्षा होगी या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:31 और 11 सेकंड हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।
3: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
4: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: श्रोताओं, आज हमने अपने इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपको सुनवाए उसके नाम है दिल है तुम्हारा, तुमको ना भूल पाएंगे, परवरिश, जीत, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमको दीवाना कर गई, मुकद्दर का सिकद्दर, जान और जानी दुश्मन। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक अब समाप्त होता है।
1: विविध भारती
2: 100.9 आपका हम सफर।
0: हंड्रेड पॉइंट नाइन मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। 3:31 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म वीर जारा से। जावेद अख्तर के गीत को संगीत से सजाया है संजीव कोहली ने। गायक कलाकार है लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजूदार।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, साधना सरगम और शंकर महादेवन की मिली जुली आवाजों में सुनते हैं समीर की गीत रचना। संगीत शंकर एहसान लौका है। फिल्म का नाम है सलामे इश्क।

लीजिए अब सुनिए फिल्म स्वदेश का ये गीत। गीत रचना जावेद अख्तर का तथा गायक व संगीतकार है AR रहमान।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। श्रोताओं, हमारी आज की दूसरी सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम इनजी रोखरे हमांग इंगजी तका इनगम मीडियम वेव 438.6 मीटर हिक इंगम 684 किलोहर्ट्स लेखते हांग इन रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम तांग

कायंग यंग योम ही कालवी हे कुकिंची रेंटे हरिवलोन इन पारु तालोन इंटे पॉई आयंग तलक तिंत्री कंती में हजो कु तलक गई हेलंगे तलक तिलक गनी हाइन हरी क्रेटिंग तमत हे मकु में गाज परी अहिंसा मामकु में ये ही हतीन केन गम दसक से जन जन तलक तन हिन ऐ तिक क्रो रे तंगम हा ए न्यमे तिक न्यने तहे न न्यमे निरे तप तंगम

0: Digaknya, G.R. Andrew Apen je antai ngamana a nanya akma late Bishop John Richardson asa ngam terhayan perita kita tak hi telek tensin nga eng ngatel nga hang ta ngamu he kin re chang ro kita kasad ida fan ke ro tala harap salam yan ngai.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी कड़ी।

I doubt that the imagination can be suppressed if you truly eradicated it in a child. He would grow up to be an eggplant. मुझे संदेह है कि कल्पना को दबाया जा सकता है। अगर आप सचमुच इसे एक बच्चे के भीतर से निकाल दें, तो वो बड़ा होकर एक बैंगन बन जाता है। इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, सेज एल्बर्ट आइंस्टाइन। चेतन विल स्पीक अबाउट द बेनिफिट्स एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन इन टुडेज लम्हे प्रोग्राम। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति पहचाने। कुछ लोग ऐसे हैं जिसे ये पता नहीं होगा कि वॉट इज विजुअलाइजेशन, कल्पना क्या है। सबसे पहले मैं उसे बता दूं कि विजुअलाइजेशन होता क्या है। जब हम कुछ सोचते हैं, तब हम जो भी सोचते हैं उसका पूरा चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है। जैसे कि हमने अभी सोचा कि कल हमने थिएटर में बैठकर मूवी देखी थी, तुरंत हमारे दिमाग में थिएटर की सारी छवियां आ जाती है। हमें वह सभी कुछ दिखने लगते हैं जो हमने किया था। वह सब एक के बाद एक हमारे दिमाग में पिक्चर के रूप में प्रकाशित होता है। उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। अगर किसी को मेरी तरह समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, आगे सुनते सुनते सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बने रहिए चेतन के साथ, लेकिन उसके लिए पूरा ये प्रोग्राम आपको सुनना पड़ेगा।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। हमारा दिमाग सिर्फ चित्र को समझता है, शब्दों को नहीं। हम जो कुछ भी सुनते हैं उन सारे शब्दों की तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक इंसान पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहा था। अब आपका दिमाग में तस्वीर बन गई होगी, क्योंकि हमारे दिमाग के पास इन सारे शब्दों की तस्वीर है। लोग पढ़ाई में अच्छा इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ाई के दौरान जो शब्द हम सुनते हैं उसमें से 50% शब्द की तस्वीर हमारे दिमाग के पास नहीं होता, और हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। सोच दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। अब आपके सामने एक सवाल आ गया कि किसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं और किसे नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आपका कोई दोस्त यानी मैं आपको कहता हूँ कि आने वाले सब एग्जाम्स में मेरे रैंक बहुत ख़राब होंगे, और आप कहते हैं कि मैं तो जहाँ जितना भी पढ़ाई करूँ मुझे अच्छे रैंक आएंगे। इसमें से आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है और मेरी नेगेटिव। फाइनल रिजल्ट आएगा, आप सच में अच्छे रैंक के साथ पास हो गए होंगे और मैं फेल। आप ध्यान से सुनना और समझ में न आए तो अपने आप को दोष नहीं देना, मुझे ही कुछ कहने में प्रॉब्लम हुआ होगा। विजुअलाइजेशन के साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का क्या संबंध है? हमारी ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम कोई काम लिए नेगेटिव सोच रखते हैं तब हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनती है

वो भी नेगेटिव ही बनती है, जिस वजह से हम कभी उस काम को सफल नहीं बना सकते हैं। आप परीक्षा में अच्छे रैंक के साथ पास हुए इसलिए नहीं कि उसके पास नॉलेज थी, इसीलिए कि उसके पास पॉजिटिव थिंकिंग थी जो उसके दिमाग में ऐसे पिक्चर बना रही थी जो उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। रास्ते पर चलते गाड़ियां, हवा में उड़ते हुए प्लेन। अभी आप रेडियो के माध्यम से चेतन का ये लम्हे प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब टेक्नोलॉजी है दोस्तों। सब कुछ तभी बना तब किसी ने ये सब अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन किया हो, लेकिन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्रयास भी किया तब जाकर आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। हमारा दिमाग वह सब कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज के इस जमाने में हमारे पास सोफिया जैसी एक रोबोट है। किस वजह से दोस्तों? इसीलिए कि जिस किसी ने उसे बनाया था महान था, नहीं वह भी एक आम इंसान। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास सोच है। तो तुरंत अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बदलिए दोस्तों। जिस वजह से हमारी विजुअलाइजेशन की क्रिया हमें सब नेगेटिव ऑप्शंस देती है, वी बिकम फेलियर्स। पूरी लाइफ सिर्फ आई कैन एंड आई कैनॉट पर निर्भर है। आप क्या सोचते हैं पर आपका जीवन निर्भर है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ्स।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जिसका यह सवाल होगा कि मूवी की कहानी पूरी याद रह जाती है, लेकिन सब्जेक्ट के लेसन्स क्यों याद नहीं रहते। मूवी के सॉन्ग्स भी याद रह जाते हैं, लेकिन कविताएं क्यों याद नहीं रहती। इसका कारण यह है कि मूवी देखते समय उस पर दिखाए गए चलचित्र हमारे दिमाग में बस जाते हैं और पढ़ते समय हमारा ध्यान कहीं और हो जाता है। अगर आप पढ़ते समय दिए गए पाठ को कल्पना के रूप में दिमाग में कैद करें तो 110% आप वह कभी नहीं भूल पाएंगे। पढ़ाई करते समय उसमें दिए गए शब्दों को अपने दिमाग में चित्र, छवियां और भावनाओं के साथ कनेक्ट करें और सोचो कि आप एक मूवी देख रहे हो, पर पाठ की मूवी के रूप में स्टडी करो। तब आपके द्वारा किए गए स्टडी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी कभी हम ऐसा कुछ स्टडी करते हैं जिसमें हमें रुचि नहीं, जिस वजह से हमारे दिमाग में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए अपनी पसंद को हमेशा महत्व दे। यदि आप अपनी छवि को आधे मिनट तक पकड़कर रख सकते हैं तब आपकी विजुअलाइजेशन क्षमता अच्छी है। और भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपके लक्ष्य को पाने से रोकते हैं, जिसके बारे में मैंने कई बार अपने प्रोग्राम्स में आपके साथ शेयर किया है। विजुअलाइजेशन को शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले प्रोग्राम में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएगा आपका दोस्त होस्ट और आरजे चेतन। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी घड़ी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं।

श्रोताओं सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहारों की शाम का। 5 बजे तमिल कार्यक्रम, 5:10 पर सुनिए प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 5वीं कड़ी जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30 जिसमें श्रोता एक ही कलाकार के गीत सुनेंगे। संध्या 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में आप कृषि कार्यों से जुड़ी महिला श्रीमती सरिता से की गई बातचीत सुन पाएंगे। आमने सामने कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:30। लेखक श्री रमेश मुगड़ा की लिखी झलकी 20वीं सदी का बच्चा आप सुनेंगे संध्या 6:45 पर। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम पर जनसूचना से आपको अवगत करवाएंगे संध्या 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया, श्रोताओं फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए संध्या 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है, दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। श्रोताओं हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर सुनिए एग्री टिप्स, विषय रहेगा फलों की तुड़ाई और सही रखरखाव। जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। सवेरे 6:15 पर सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष, विषय रहेगा रूप। रामचरितमानस कांड का समय रहेगा सवेरे 6:30। सवेरे 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत। मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों के विवरण से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:50 पर। सवेरे 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम देश रागनी गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:30। सवेरे 8:30 पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम, फनकार होंगे अशोक खोसला। बाल जगत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 9 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर पंडित भीमसेन जोशी का हिंदुस्तानी शैली में गायन आप सुन पाएंगे। सवेरे 10 बजे सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मेरी पसंद कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 11 बजे। दिन के 11:30 पर सुनिए कार्यक्रम गजल, कलाकार होंगे अनुराधा पौडवाल, जसवंत सिंह, सोनू निगम, चंदन दास और भूपेंद्र सिंह। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे। मलयालम कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दोपहर 12:30 पर। 1:10 पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम, कलाकार होंगे गुलाम अली। घर संसार कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:30। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ श्रोताओं हमारी पहली सभा प्राइमरी चैनल पर समाप्त हो जाएगी, जबकि 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रम 2:30 पर गीत लहरी दोपहर 3 बजे एल्बम सॉन्ग्स और 3:30 पर यूं ही गाते रहो के कार्यक्रम जारी रहेंगे। श्रोताओं हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए कार्यक्रम लम्हे, कार्यक्रमों के विवरण से आपको अवगत करवाएंगे शाम 4:40 पर। 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 5 बजे तमिल कार्यक्रम, बंगला कार्यक्रम

कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर। महिलाओं के लिए व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संगीत संगनी संध्या 6 बजे। संध्या 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे राजस्थानी लोकगीत। देशगान कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:45। मौसम की जानकारी, जलियानों की यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाओं से आपको अवगत करवाएंगे संध्या 7:15 पर। 7:20 पर आनंद लीजिए कुछ फिल्मी गीतों का। संध्या 7:30 पर सुनिए युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत लाइव फोन इन प्रोग्राम 90 वर्ष आकाशवाणी। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे हमारे सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे अंदाज फिल्म से कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है बप्पी लहरी ने।

इंदिवर का लिखा हुआ वप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में तैयार, श्रोताओं सुनिए फिल्म अमानत का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोताओं बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री रामजी भगत जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
2: भगत जी राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है, तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
3: मैं तो सरपंच हूँ लेकिन मेरे ग्राम और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं वो भी खुशी के झूम उठे और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरढ़ी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मुकाम पे पहुंचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
2: सरपंच जी जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया, और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
3: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास हमारे गांव में और जंगल है पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोकर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में चार बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
2: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
3: मेरा सहयोग दिए।
2: अच्छा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो शत प्रतिशत सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
3: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं और धीरे धीरे हम लोग लोकर सभा जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से और हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको

0: आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
0: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
1: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
0: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है और पानी का बचत के लिए, और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का 2 मीटर का 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर सेट में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर सेट में काम किया, माइक्रो वाटर सेट कर ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
0: सर, पहले हम लोग यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
0: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर सेट में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन के सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
0: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
1: मतलब उसके लिए भी आपने
0: कार्य योजना तैयार कर रहे हैं।
1: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, कहा कि उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं, वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां है, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
0: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्वर सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं, और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
0: और सप्ते में हम जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर, केड़ा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केड़ा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसान

0: किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहे हैं।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता।
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
0: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम सुबह, जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इस मिनट उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, इसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इस मिनट उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर से उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है, जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन अच्छा है। मेरा सोमवार मंगल बुध भी फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक हूँ, अपने घर में बैठता हूँ और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है।
1: यानी लगातार व्यस्त रहते हैं?
0: मतलब कि हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
1: यही कारण है कि आपकी पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गांवों में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
0: सर, उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को जिला का हुआ चाहे राज्य को हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं, चाहे जिससे कहा महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। अब हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गाँव के हर एक व्यक्ति तक पहुँचे इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के ग्रुप ने तो उसको मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है, जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, प्रशासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि

0: आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
1: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि हैं या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
0: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए बांग्ला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र थेके शुरू करछि आजकेर बांग्ला अनुष्ठान।

0: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे है। श्रोताओं लीजिए सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: वाले सभी किसान भाइयों एवं बहनों को आंचल का प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, हर बार की तरह चलिए आज के भी कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे एक नेक विचार से। और आज का विचार है, जीतने वाला व्यक्ति वह होता है जो चुनौतियों से बचने के बजाय उनका सामना करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोशिश करता है वही जीतता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस नेक विचार के भाव आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और किसान साथियों, आज का प्रश्न है 24D, एक शाकनाशी है या नहीं। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, 24D एक शाकनाशी है या नहीं। साथियों, ये रहा आज का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही बताएंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भाइयों, आइए अब खेत बचाओ अभियान के विषय में चर्चा करते हैं। किसान साथियों, अंडमान और निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग के ATME या आत्मा एवं ICAR कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान के सहयोग से 1 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय व्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य है किसानों को वैज्ञानिक एवं जलवायु संवेदनशील खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि उत्पादकता बढ़े और प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य प्रबंधन, हरित खाद, जैविक एवं जैव उत्पाद, एकीकृत पोषण प्रबंधन, इन सभी विषयों पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। 1 जून को कोलनपुर और नमूना घर गांवों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त 3 जून को सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को जल संरक्षण, मौसम आधारित फसल परामर्श और सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। 4 जून को हरिनगर, उत्तर एवं मध्य अंडमान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती पद्धतियों तथा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने हरी खाद और समेकित पोषक तत्व प्रबंधन पर बल दिया। किसानों ने फसल उत्पादन और पोषक तत्व प्रबंधन से जुड़े प्रश्न पूछे। 5 जून को पिनाकी नगर और कमलापुर गांवों में कार्यक्रम हुआ। किसानों को अकार्बनिक और जैविक उर्वरकों के संयुक्त उपयोग से समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारी दी गई। उन्हें वर्मी कंपोस्टिंग और जैव उर्वरकों जैसे एजिटोबैक्टर, एजोस्पीरिलियम और वैम अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। किसानों ने सक्रिय सहभागिता की और सरकारी सहायता योजनाओं पर चर्चा की। प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती और सतत कृषि पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है ये अभियान। खेत बचाओ अभियान का लक्ष्य है किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना, दीर्घकालीन उत्पादकता सुनिश्चित करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। किसान साथियों, अभी आपने चर्चा सुनी। चर्चा का विषय था खेत बचाओ अभियान।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: उम्मीद करते हैं कि आपको गीत जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और आपको मिलवाते हैं नमूना घर की रहने वाली श्रीमती सरिता जी से, जो कि कृषि कार्यों से जुड़ी एक महिला है। तो चलिए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनसे की गई बातचीत। आइए आपको मिलवाते हैं सरिता जी से। सरिता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट काम करते हैं और सुपारी का बगीचा है।
0: जी जी।
1: फिर 4-5 नारियल पेड़ और मुर्गी पालते हैं।
0: आपके पास सुपारी कितनी होगी?
1: सुपारी होंगे 50-60 पेड़।
0: जी, क्या ये आपने लगाया है या पहले से आपका?
1: जी, पहले से मेरे ससुर लोग
0: लगा के रखे थे। आप लोग उसकी देख रेख करते हैं? तो कैसे देख रेख करते हैं बताइए।
1: सफाई सब करते हैं जी, सुबह शाम करते हैं।
0: जी
1: जी, जब सुपारी फलता है तो बिनने जाते हैं।
0: जी,
1: फिर सुखाना।
0: जी जी,
1: बस यही सब।
0: जी, तो सुपारी से आपको कैसा फायदा होता है, कितना फायदा होता है?
1: सुपारी से हो जाता है फायदा, साल भर में 50-60 हज़ार तो कमा ही लेते हैं।
0: जी जी, बिल्कुल। और आप मुर्गी भी पालती हैं? वो
1: जी
0: जी, तो मुर्गी आपके पास कितनी है?
1: मुर्गी है 20-30 मुर्गी है।
0: जी, तो ये जो मुर्गी पालन की जो आपने शुरुआत की है, आप कब से आप कर रहे हैं?
1: अभी 4-5 साल हो गया।
0: जी, आप 4-5 साल से मुर्गियों की देखरेख करती हैं। तो आप कैसे अपना दिनचर्या शुरू करते हैं बताइए, सुबह से लेके शाम तक, है ना?
1: सबसे पहले तो उठना, उनको साफ सफाई करना, चारा देना, फिर थोड़े टाइम के लिए बाहर खोलते हैं। ऐसे तो जंगली मुर्गी है, दिन भर बाहर ही रहता है।
0: जी।
1: फिर शाम को दाना देना।
0: जी जी।
1: फिर 5-6 बजे इसको बंद कर देना।
0: जी, दाने में आप क्या देती हैं बताइए? सिर्फ गेहूँ देते हैं? जी, और उसे खुले में छोड़ भी देते हैं? जी, तो आपके पास कितना बड़ा एरिया है?
1: जगह तो बहुत सारा है, हो जाता है मुर्गी लोग की।
0: जी जी जी, जैसे आप मुर्गी आप बढ़ाती है ना, तो उनके जो अंडे हैं उनसे चूजे निकलते हैं, तो उनकी देखरेख कैसे करते हैं, कैसे व्यवस्था कर रखी है ताकि आपका जो मुर्गी के चूजे हैं ना, इनको आप सुरक्षित रख सके?
1: जी, पहले तो जब चूजे निकलते हैं तो हम कम से कम 10-15 दिन तो उनको बाहर नहीं छोड़ते हैं।
0: जी जी
1: जी, अंदर ही, घर के अंदर ही रखते हैं। दाना सब अंदर ही देते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद हम लोग खोलते हैं, वो भी एक टाइम से, जैसा सुबह का टाइम 12 बजे के बाद थोड़ा टाइम के लिए खोलते हैं, फिर उनसे बंद कर देते हैं।
0: जी जी जी, तो अभी जैसे आपके पास 20-30 मुर्गियां हैं ना, तो उन सब की देख रेख करना, जैसे देखिए 20-30 मुर्गियां भी जो है वो उनके मल से दुर्गंध आती है, तो साफ सफाई का आप कैसे ध्यान रखते हैं बताइए?
1: जी, साफ सफाई हम लोग सुबह उठ के जो मुर्गी घर है उनको पानी से धो देते हैं, साफ सफाई रखते, फिनाइल उनाइल डालते हैं अगल बगल।
0: और कभी आपने मुर्गियों में बीमारियां देखी हैं? क्योंकि आप 4 साल से मुर्गियों को पालती है ना, कैसी बीमारियां आपने देखी हैं?
1: बीमारी बोलने से तो बरसात के टाइम में आता है।
0: जी,
1: आता है और एक ही बार में मुर्गी खत्म हो जाता है। तो और मुर्गी के अंदर में एक बीमारी है जो चूजे में सफेद सफेद आँखी के ऊपर, मुंह में सब हो जाता है, तो हम उनको हल्दी और कड़वा तेल लगा के उनका देख रहे हैं।
0: मतलब वो मुर्गी जब वयस्क मुर्गियों में आप देखती हैं, उनको इस तरह की, हमेशा इस तरह की बीमारी होती है बारिश के मौसम में।
1: जी।
0: फिर आप मतलब आप जो उपचार करती है, आपने क्या कहा, हल्दी को उनकी आँखों में लगाती है, तो ऐसे में वो ठीक हो जाते हैं?
1: जी, सारे तो नहीं होते हैं, कम से कम ठीक हो ही जाते।
0: मतलब कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ ठीक होना संभव नहीं होता, तो वो मर जाते हैं। और कोई ऐसी बीमारी आपने देखी है?
1: नहीं, बस ऐसा तो कोई बीमारी नहीं है।
0: तो अब जैसे आप बता रही हैं ना कि आपके पास मुर्गियां हैं, और उनके घर की व्यवस्था आपने कैसे कर रखी है?
1: जी, घर के लिए तो हम लोग अलग से झोपड़ी बनाए हैं, नीचे सीमेंट का पक्का करके रखे हैं।
0: जी जी।
1: और साइड में सुपारी से हम लोग मचान बनाए हैं।
0: अच्छा।
1: उसी में रखते हैं।
0: जी जी।

0: के लिए अलग, छोटे छोटे बच्चों लोग के लिए अलग और बड़े मुश्किल लोग के लिए अलग।
1: जी आप चूजों को बड़ा करती हैं ना, तो कैसे करते हैं बताइए।
0: जी अलग विधि से तो नहीं, पहले भूसी बिछा के रखते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं, तो फिर उनको सुबह शाम सफाई करना और उन लोग के लिए अलग से एक दाना लेके आते हैं
1: जी
0: पिसवा कर, जैसे मक्का और गेहूं जो रहता है उसको अलग से पिसवा के लेके आते हैं।
1: जी जी
0: जी आजकल पहले तो पिसवाते थे, आजकल तो रेडीमेड मिल भी जाता है दाना।
1: अच्छा कितने दाम में मिलता होगा रेडीमेड वाला?
0: 2-3 हजार का बिस्तर।
1: 2-3 हजार का? वो क्या आपको खरीद के आना पड़ता है या फिर आपको इनसे मिल जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कहीं से
0: नहीं,
1: मिलता
0: हम लोग तो खरीद के लेते हैं।
1: जी जी देखिए आपको खरीद के भी लाना पड़ता है, और आपको मुर्गी पालन में फिर कुछ मुनाफा होता है?
0: जी हो जाता है थोड़ा, मतलब क्योंकि हम लोग दाना खरीद के लेके आते हैं, फिर मुर्गी बिक्री भी करते हैं।
1: अच्छा कितने दाम में बिक्री करते हैं बताइए।
0: जी एक्चुअली मुर्गी का यहाँ पर तो केजी 500-600 रुपए रेट है,
1: जी जी
0: तो हिसाब से वही
1: लोग घर आकर लेते हैं या फिर आप कहीं जाकर उसे बिक्री करते हैं?
0: घर आकर लेके जाते हैं।
1: घर आके लेके जाते हैं। अच्छा यहाँ का जो मार्केट होता है नमूना घर में, नमूना घर का जो मार्केट है, इसका आप कैसे फायदा उठाते होते हैं?
0: जी हम नहीं जाते,
1: लेकिन आपके घर में ही आकर लोग मुर्गी ले लेते हैं, तो कैसे आपसे कांटेक्ट करते हैं बताइए।
0: जी अगर आज कोई ये खरीद के गया जो पहले से खरीदे हैं, तो उनको पूछ लेते हैं, फिर वो उनको बताते हैं, तो ऐसा हो जाता है।
1: मतलब आपके जो फिक्स्ड कस्टमर है वही आपसे आकर लेते हैं? अच्छा आपसे पहले कांटेक्ट कर लेते हैं फिर आपसे लेते हैं। ये तो हो गई मुर्गियों की बात, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप सुबारी का देख रेख करती हैं, तो उसके बीच के जो जमीन होती है वो खाली पड़ी होती है, तो उसमें आप कुछ उगाती हैं या उगाने का सोचती हैं?
0: क्योंकि सुपारी और नारियल का जो जड़ का जैसे तो उधर में कुछ होता नहीं है।
1: जी जी
0: तो जो थोड़ा मोटा सब्जी होता है वो अपना घर के लिए हो जाता है।
1: जी
0: जी
1: लेकिन आप लोग वहाँ पे सब्जियाँ उगाते हैं?
0: जी
1: जी और गर्मियों के मौसम में आपको जब पानी देना होता है तो ऐसे में आप कैसे व्यवस्था करते हैं?
0: जी पानी के लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर हम अपना एक कुआ खोद के रखा है
1: जी,
0: तो उसके सहारे हो जाते हैं।
1: जी तो आप अपनी ओर से बताइए कि आपका क्या अनुभव है जब आप ये सारे काम करती है, मुर्गियों की देख रेख करती है, तो आपको कैसा लगता है, आपके अपने अनुभव बताइए।
0: अनुभव तो बहुत अच्छा है, पूरा दिन मतलब उस पर निकल जाता है, अच्छा ही लगता है जब हम लोग मुर्गी घर चलते हैं, उससे हमारा रोजी रोटी चल जाता है। तो अब हम लोग का रोजी रोटी निकल जाता है तो हम लोग इतना परेशानी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट काम करने वाले हैं, हस्बैंड प्राइवेट करते हैं, तो हमारा सहारा बन जाता है।
1: जी तो ये जो मुर्गियों की देख रेख आप अकेला करती हैं कि आपका साथ कोई देता है?
0: नहीं है, मेरे सास भी है।
1: आप अपने सास के साथ मिलकर ये काम करती हैं? चलिए आप अपनी जैसी औरतों को क्या सलाह देंगी या कुछ कहना चाहेंगी अपनी ओर से?
0: जी हम तो बस यही सलाह देना चाहेंगी कि जैसा हम लोग घर में हाउस वाइफ है, तो हम लोग के लिए ये एक जरिया है
1: जी
0: रोजगार के लिए।
1: बिल्कुल, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मुर्गी पालन करके भी कमाई कर सकती हैं, थोड़ा बहुत कमाना भी आपके लिए बेनिफिट ही होता है।
0: जी
1: जी तो चलिए आपसे बहुत सारी बातें की, और जाते जाते आप इतने बता दीजिए कि जैसे मुर्गी को पालने में कुछ तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है क्या?
0: तकलीफों का सामना तो बहुत करना पड़ता है, क्योंकि जब बीमारी आता है तो हमें बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, सारा मुर्गी एक ही बार में खत्म हो जाता है।
1: जी तो चलिए आपसे इतनी सारी बातें हुई, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, आपको धन्यवाद। किसान भाइयों अभी आपने नमूना घर की रहने वाली श्रीमती सरिता जी से की गई बातचीत सुनी, और आपने जाना कि कैसे वे कृषि कार्य कर अपना गुजर बसर करती हैं। आइए किसान साथियों और एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: किसान साथियों, कार्यक्रम का वह पड़ाव आ चुका है जहां पे पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। हमने आपसे पूछा था 2,4-D एक शाकनाशी है या नहीं, और इस प्रश्न का सही उत्तर है 2,4-D एक शाकनाशी है जो चौड़े पत्ते वाले पौधों पर प्रभाव डालता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों को इस बात की जानकारी थी, और यदि नहीं तो प्रश्न उत्तर के माध्यम आपको इस बात की भी जानकारी हासिल हो गई होगी।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
2: पर अब तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान साथियों, हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ चुके हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले किसानवाणी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल, और अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने। आज इस अंक में सुनिए एनडीए सरकार के 12 वर्षों में विज्ञान अनुसंधान और स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की उपलब्धियों पर स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री नरेश चंद्रलाल से की गई बातचीत। इनके साथ बातचीत कर रही हैं हमारी संवाददाता पूजा सिंह।
2: नमस्कार, आमने सामने के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे एनडीए सरकार ने 12 वर्षों के दौरान देश में विज्ञान अनुसंधान और तकनीक के क्षेत्र में कैसे उल्लेखनीय प्रगति की है। इन नवाचारों का प्रभाव केवल बड़े उद्योगों और संस्थानों तक ही सीमित नहीं।

0: नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता जैसे क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक सोच ने स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा और गति प्रदान की है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने बात की द्वीपों के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल जी से, और जानने की कोशिश की कि किस प्रकार विज्ञान और तकनीक स्वच्छता के लक्ष्य को और अधिक प्रभावी बनाने में योगदान दे रहे हैं। तो नरेश जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पिछले 12 वर्षों में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। आपके अनुसार इन वैज्ञानिक प्रगति और नवाचारों ने स्वच्छ भारत अभियान तथा स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को किस प्रकार मजबूत किया है?
1: देखिए, मैं 2016 से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैंने अंडमान निकोबार का हर जगह दौरा किया है और बहुत ही बारीकी से मैंने देखा परखा है। यहाँ पर विज्ञान और तकनीकी की अगर आप बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इस पर बहुत काम हो रहा है। हर जगह में क्लस्टर्स बने हुए हैं, सेग्रीगेट पॉइंट्स बने हुए हैं और चार तरह का सेग्रीगेशन अब शुरू हो गया है। पहले वेट ड्राई दो तरह का वेस्ट होता था, लेकिन अब जो है ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, आपका जो सैनिटरी वेस्ट और दूसरे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसका वेस्ट, ये चार तरह का सेग्रीगेशन शुरू हो चुका है। रिसाइक्लिंग का भी काम शुरू होता है, जो प्लास्टिक है, जो दूसरे जो है, जो मेटल्स है, उनको रिसाइक्लिंग के लिए जो है यहाँ से मेनलैंड भेजा जा रहा है। और इस समय जो है 3 RR जो काम हो रहा है, R जो है रिड्यूस, रिसाइकल और आपका री इन्वॉल्वमेंट, तो 3 RR के ऊपर काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा। लेकिन देखा जा रहा है, ये रहा है कि जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जो यहाँ के द्वीपवासी हैं, वो थोड़ा से स्वच्छता के प्रति पूरी तरह से जागरूक अभी तक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कितना भी विज्ञान आगे बढ़ जाए, साइंस आगे बढ़ जाए, लेकिन भागीदारी तो जन समुदाय की होती है ना। तो हम जितना भी अगर वेस्ट फेंकते हैं या वेस्ट को एक जगह में डंप करते हैं, तो इससे जो हमारे जो सफाई मित्र जो हैं उनको बहुत तकलीफ होता है। और सेग्रीगेशन के लिए आजकल तो जो श्री विजयपुरम जो म्युनिसिपल काउंसिल है, वो तो घर से वेस्ट लेते हैं। जो सफाई जो मित्र हैं, जो घर आते हैं और घर से आकर वो अपना वेस्ट लेकर जाते हैं, तो हमारा काम है कि सेग्रीगेट करके उसे दें। जो गीला कचरा, सूखा कचरा या मेटल है या जो भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, उसको हम सेग्रीगेट करके दें ताकि वो आसान होगा। और जहाँ तक पानी की समस्या है, पानी की समस्या भी है, क्योंकि पहले आप देखते होंगे, आप जो अभी नेताजी सुभाष जो द्वीप है, जो पहले रॉस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे आप अगर गए होंगे तो वहाँ में ब्रिटिश टाइम में आपको लगा होगा कि खारे पानी को कैसे स्वच्छ जल में कन्वर्ट करते थे। वो बड़े बड़े वहाँ टैंक लगे हुए हैं, आप देखने को मिलेगा ये चीज़। तो क्यों ना हम, अभी हमारे यहाँ पानी की समस्या है, पानी का जो हमारी जो किल्लत है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जगह भी ऐसे ही हम लगाएं, इक्विपमेंट्स लगाएं, जिससे कि खारा पानी जो है हम पीए जल में हम और दूसरे काम में हम यूज़ कर सकें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इस समय जो पूरी तरह से जो है यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। और जहाँ तक माननीय मोदी सरकार के सफलता के 12 वर्ष की बात आती है, तो मैं अभी उनके इसी काम को मैं काम में लगा हुआ हूँ। मैं अपने छोटे छोटे फिल्म के माध्यम से उनकी उपलब्धि को बता रहा हूँ, कि जैसा कि उज्ज्वला गैस योजना जो उन्होंने शुरू किया था, उस पर मैंने छोटी से 3 मिनट की फिल्म बनाई पितामा। मोदी जी के जो काम पर मैंने एक दूसरी फिल्म बनाई पितामा 2। एक सफाई मित्र के ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई है, ये भी जो स्वच्छ भारत के ऊपर में फिल्म है। अभी मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ आयुष्मान भाव, आयुष्मान भारत के ऊपर फिल्म। तो मैं जो सफलता के 12 वर्ष हुए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं आगे भी जो 29 तक 2029 तक जो ये सरकार जो है NDA की सरकार ने जो भी उपलब्धि हासिल की है

0: जो भी नया आयाम देशवासियों को दिया है, मैं उस पर छोटी छोटी फिल्म बनाने लगूंगा, बना रहा हूं और बनाऊंगा, ताकि लोगों को इसके माध्यम से पता चले कि एनडीए सरकार अपने समय में क्या कुछ कर चुकी है और क्या कुछ करने वाली है।
1: कचरा प्रबंधन की बात आपने कही, साथ में आपने RRR की बात भी कही, तो कचरा प्रबंधन और स्वच्छता में तकनीक का उपयोग ये पर्यावरण संरक्षण में कितना सहायक है?
0: देखिए, पर्यावरण में संरक्षण में सहायक तो है, लेकिन एक बात यह है कि जहाँ पर कचरा देखा गया है वहाँ पे सेड नहीं है, वहाँ पे खुला में है। तो खुला जगह में अगर कचरा आपका रहता है, चाहे आप ये क्लस्टर पॉइंट में जाए या कोई जो रिसाइकलिंग जगह में जाए, तो वो खुला जगह है। तो खुला जगह में क्या होता है कि जंगल में हो तो जो पशु पक्षी है या जो स्ट्रीट डॉग्स है या पशु है, वो सब उस कचरा में आके मुंह मारते हैं और गंदगी और फैलाते हैं। तो जहाँ पे कचरा का अगर जहाँ पे आप सेग्रीगेट करते हैं, वो जगह बंद होना चाहिए, वो जगह कवर्ड होना चाहिए, ताकि दूसरा कोई वहाँ पर ना जा सके। और उसका जो स्मेल है, उसका स्मेल भी जो है प्रदूषण को ख़राब ना करे, क्योंकि हमारा बहुत क्लीन सिटी ग्रीन सिटी है, लेकिन कुछ ऐसा हमारे तरफ से ना हो जिससे कि जो प्रदूषण जो है वो ख़राब हो जाए और स्वास्थ्य में लोगों का हानि हो जाए। देखिए, वहाँ पर जो कचरा जो मार्केट लगता है, संडे मार्केट, मोस्टली संडे मार्केट, संडे मार्केट का जो कचरा है डस्टबिन में तो बराबर डाला जाता है, लेकिन उसको उठाने के लिए जो है वो 6-7 दिन लग जाते हैं। तो वो कचरा वहीं पे डंप होके पड़ा रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं तो गाँव गाँव सब जगह जाता हूँ, तो लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप कचरा आज डालते हैं तो इसका कल निवारण होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो पड़ा ना रहे, बस ये ज़रूरी है। तो इसके लिए लेकिन वहाँ पर काम हो रहा है, पंचायत भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन मैन पावर बहुत कमती है। दूसरे गाड़ी भी जो है वो जो यहाँ से वहाँ कचरा ले जाने वाले हैं वो भी कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर होना चाहिए, ताकि आपका जो ये जो फेंका हुआ कचरा जो है वो जल्द से जल्द डिस्पोज किया जा सके। देखिए, मैंने मेरे दौरान में मैं तो जनरेशन तैयार कर रहा हूँ, मैं बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों के पास जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को मैं ये गाइडलाइंस देता हूँ, स्वच्छता क्या है, स्वच्छता ही सेवा है, और कैसे आप स्वच्छता को अपनाएंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब ये जनरेशन अवेयर हो जाएगा, तो जब इसके जो जनरेशन आएंगे, तो उसके लिए फिर देश को कोई स्वच्छ भारत अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। और मैं आज दूरदर्शन के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो है, ये जो यंग जनरेशन जो है, ये स्वच्छता के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। मैं मेडिकल भी जाता हूँ,
1: जी
0: सारे स्वास्थ्य केंद्र जाता हूँ, जीवी पंत हो, आयुष हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन सेंटर, तो वहाँ पर। लेकिन आप कितना भी शोध करें, कितना भी आप साइंस को ले आए, लेकिन जब तक स्वच्छता आदत में नहीं आएगी, स्वच्छता ब्लड में नहीं आएगी, स्वच्छता आपकी आदत नहीं बनेगी, तब तक आपका साइंस टेक्नोलॉजी सब मेरे ख्याल से धरा का धरा रह जाएगा। ज़रूरत है हम लोगों को समझने की, स्वच्छता को अपने आदत में लाने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की, तभी जाकर शोध कार्य या जो साइंस जो है वो आगे आकर अपना और अच्छी तरीके से काम कर सके। बहुत बदल गया है हमारा जो जो आइलैंड को, अभी जो 350 में था वो तो 10-12 के अंदर आ गया है। तो सब तरफ जो है सफाई है, मोस्टली सफाई है, साफ सफाई है, और ये एक बात का मतलब एग्जाम्पल है कि जो पिछले में आप देखते थे चारों तरफ गंदगी गंदगी होती थी, लेकिन अब उतना गंदगी नहीं है, क्योंकि आप दिन रात को जो है आप देखते होंगे श्री विजयपुरम के म्यूनिसिपल काउंसिल के लोग वो सफाई करते नजर आते हैं, रात को भी, सुबह भी, दिन को भी। तो जब ये सफाई वाले सफाई मित्र इतना काम कर रहे हैं, तो हमारा आइलैंड तो साफ होगा ही होगा, बस थोड़ा हमें समझना है। नहीं तो आजकल डिजिटाइजेशन हो गया है, और हाँ, पूरी तरह से जो है इन 12 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरह से विकसित हो चुका है, और

0: स्कूल में डिजिटाइजेशन है, बच्चे आजकल जो है जो पहले क्लास में करते थे अब वो ब्लैक बोर्ड में नहीं है, अब वो कंप्यूटराइज के माध्यम से यहाँ बैठकर अमेरिका से भी आप लिंक कर सकते हैं, रशिया से लिंक कर सकते हैं, देश के किसी कोने से लिंक कर सकते हैं। देखिए, इन 12 वर्षों में स्किल इंडिया पर बहुत काम हुआ है, नए नए आयाम आए हैं। स्टेट बैंक सिलाई का ट्रेनिंग शुरू किया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वेल्डिंग का ट्रेनिंग शुरू किया, दूसरा स्टार्टअप इंडिया खुद जो है, आप खाली गवर्नमेंट सर्विस पे मत भागिए, आप खुद अपना रोजगार शुरू करिए, खुद का चाहे वो कोई काम हो आप अपना शुरू करिए, देश आपके साथ है, आपको लोन भी देता है, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपको पूरा हेल्प सरकार दे रही है। दूसरा आयुष्मान भारत, आपके इलाज के लिए भी उसने अपना पांच मतलब एक परिवार को 5 लाख रुपया का रकम राशि जो देने का ऐलान किया है। दूसरा आयुष्मान भारत ये 12 साल की सबसे बड़ी देन है, क्योंकि लोग बूढ़े लोग बिना इलाज के मर जाते थे, इलाज के लिए पैसा नहीं था, घर गिरवी नहीं रख सकते थे, कुछ नहीं था, तो इसमें भी सहयोग है। देशवासियों के लिए सरकार ने बहुत कुछ मदद की है, यूथ जनरेशन के लिए सरकार ने पूरी तरह से हेल्प किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए हर घर शिक्षा, हर घर हर जनरेशन को शिक्षित होने के लिए गांव-गांव में स्कूल, शहर-शहर में स्कूल आया है।
1: तो ये थे द्वीपों के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल, जिन्होंने विज्ञान अनुसंधान और तकनीक की मदद से स्वच्छता के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों पर अपने विचार साझा किए। निश्चित रूप से वैज्ञानिक नवाचार और जन भागीदारी का ये संगम स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आने वाले समय में भी तकनीक और अनुसंधान के ऐसे प्रयास स्वच्छता अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। आमने सामने के आज के अंक में इतना ही, चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।
2: आमने सामने के इस अंक में अभी आप एनडीए सरकार के 12 वर्षों में विज्ञान अनुसंधान और स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की उपलब्धियों पर स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री नरेश चंद्रलाल के साथ पूजा सिंह की यह बातचीत सुन रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की भेंट थी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए झलकी 20वीं सदी का बच्चा।
3: विदेशी घड़ियां बरामद, उत्तर प्रदेश में तेल उद्योग विकास।
4: ओ चुप! अरे पूछू,
5: तेरी मम्मी कहाँ है रे?
3: हम अखबार पढ़ रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करिए।
5: अच्छा बेटा, हमारी नकल उतार रहे हो?
4: सीधे बताओ मम्मी कहाँ है।
3: वो पड़ोस में श्रीवास्तव आंटी के यहाँ गई है।
4: तब तो अपना ही राज है बेटा पोचू।
3: तो इस खुशी में हमें चवन्नी दीजिए, आज हम आइसक्रीम खाएंगे।
5: हमारे जेब पर तो आपकी मम्मी ने समेरे ही हाथ साफ कर दिया बेटा। अरे अब कहाँ से लाए चवन्नी?
3: हमसे उधार ले लीजिए।
5: क्यों बे, तेरे पास कहाँ से आई चवन्नी?
3: सवेरे आपकी जेब साफ करने में हमारा भी तो साझा था।
5: समझ गया
3: शैतान। अरे हमारे काम तो छोड़िए।
5: तुमने ही अपनी मम्मी को हमारी जेब का रास्ता बताया था, क्यों मैं?
3: हमने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि पापा की जेब में आज बहुत पैसे हैं। अरे लेकिन हमारे काम तो छोड़िए।
5: कान के बच्चे अब खाएगा चुगली?
4: ओवर टाइम के पैसों में से कुछ बचाकर बमुश्किल महीने भर का जेब खर्च चलता है, और ये लड़का है कि देखो।
3: आपको तो 1 रुपया रोज देती है मम्मी।
5: अरे इस महंगाई के जमाने में 1 रुपया रोज से क्या होता है बेटा पोचू?
3: तो फिर आप ये सोचिएगा कि 4 आने में रोज हमारा गुजारा कैसे होता होगा, इसीलिए तो कभी कभी बातों में दलाली करनी पड़ती।
4: अच्छा चलो कुर्सी से और स्टूल पर बैठ, हम जरा अखबार पढ़ें।

0: जरूर जरूर लीजिए, तशरीफ रखिए। पर ठहरिए, पहले एक सवाल हल कीजिए।
1: अबे क्या मुझे हातिम ताई समझ लिया है तूने?
0: हातिम ताई ने तो 7 सवाल हल किए थे, आप सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दीजिए।
1: लेकिन बेटा एक शर्त है, कोई पहेली मत पूछना। पहेली पूछने की हमारी उम्र तो अब गई।
0: नहीं जी पापा जी, बहुत सीधा साधा सवाल है।
1: अच्छा
0: बतलाइए, ये किसकी तस्वीर है?
1: हाथी की।
0: गलत अजी, पापा जी आप ध्यान से तो देखिए।
1: अबे मुझे चराता है, हाथी ही की तो तस्वीर है।
0: दुखी मत होइए पापा जी, पहले हमसे भी यही गलती हुई थी।
1: इसमें गलती वलती क्या है, सरासर हाथी की तस्वीर है।
0: अजी हाथी की नहीं, हथनी की तस्वीर है। हथनी है? नीचे पढ़िए, उसका नाम भी लिखा है।
1: अच्छा चलो यहाँ से, फालतू दिमाग चाट रहा है।
0: देखिए देखिए पापा जी, चिढ़ते नहीं?
1: चलो यहाँ से।
0: अरे अरे कान तो छोड़िए, हमारे कान उठते हैं उठते हैं।
1: अब आए ना सीधे रास्ते पर, जरा देखें क्या खास खबरें हैं भाई अखबार में आज। क्या है ये, उत्तर प्रदेश में रेल उद्योग के समय सिकुड़ती ही गई और
0: आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे पापा जी?
1: सिकुड़ती समय समय समय उसका देहांत हो गया।
0: आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे पापा जी?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: आज रविवार है।
0: तब तो आज शाम को हमें चिड़ियाघर ले चलोगे ना? देखियो आपने पिछले हफ्ते वादा किया था।
1: क्या मजा आता है तुम्हें चिड़ियाघर में, समझ में नहीं आता।
0: बतलाऊं, पिछली बार हाथी पर चढ़े थे ना तो बहुत मजा आया था। क्या हम लोग एक हाथी नहीं ले सकते पापा जी?
1: क्यों, ये गधा काफी नहीं है क्या बेटा?
0: आप गधे कहाँ है पापा जी, आप तो घोड़े हैं।
1: क्या मतलब?
0: कितने दिन हो गए पापा जी आप घोड़े नहीं बने। पापा जी आप घोड़ा बनिए ना, हम आपकी पीठ पर सवारी करेंगे।
1: हाँ हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम्हारी मम्मी हमेशा सर पर सवार रहती हैं, तुम पीठ पर सवार हो जाओ।
0: आपके सर पर तो बाल ही नहीं है पापा जी, मम्मी सवार होंगी तो फिसल नहीं जाएंगे।
1: अरे बतलाता हूँ, बहुत बकवास करने लगा है आजकल तू तो।
0: अरे अरे हमारा काम तो छोड़िए, अरे अरे काम तो छोड़िए, नहीं तो मम्मी को ना बता देंगे।
1: इतने बड़े हो गए लेकिन अभी तक बचपना नहीं किया तुम्हारा।
0: क्या बचपना किया हमने?
1: अरे तो क्या तुम्हारी पीठ पर सवार होने की उम्र है?
0: तो बतलाइए क्या करें,
1: कुछ पढ़ाई लिखाई किया करो।
0: पढ़ाई तो स्कूल में करते हैं।
1: पर हम आज देखेंगे कि तुम्हारे स्कूल में कैसे पढ़ाई।
0: पर पापा जी हमारा पढ़ने का मूड नहीं है।
1: लेकिन बेटा जी हमारा पढ़ाने का मूड है। ये कौन सी पुस्तक है? गणित की। गुड गुड गुड, आज हम तुम्हें गणित पढ़ाएं।
0: लेकिन पापा जी,
1: लेकिन वेकिन कुछ नहीं।
0: आप मेरी बात तो सुनिए पापा जी।
1: हम कोई बात सुनना नहीं चाहते, केवल अपने सवालों का जवाब सुनना चाहते हैं।
0: अच्छा लेकिन एक शर्त है पापा जी।
1: क्या?
0: फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को खूब सवाल पूछने चाहिए और उनके जवाब भी मिलने चाहिए।
0: तो फिर हमें मंजूर है।
1: लेकिन देखो बहेलियां वहेलियां मत पूछना।
0: नहीं पापा जी, हम सीधे सवाल पूछेंगे।
1: तो ठीक है, हम तुमसे अब ये सवाल।
0: लेकिन पापा जी पुस्तक।
1: लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चुप रहो। अच्छा ये बताओ कि ये, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है तुमने?
0: ये चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है पापा जी?
1: अबे चक्रवर्ती नहीं, चक्रवृद्धि।
0: नहीं पढ़ा पापा जी।
1: और ये साधारण ब्याज?
0: वो भी नहीं पढ़ा पापा जी।
1: ये भी नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा, तो क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है तुमने? काम और समय पढ़ा?
0: वो भी नहीं पढ़ा पापा जी।
1: मुझे बनाता है, इसमें तो निशान लगा है। चल बता, एक स्त्री एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेती है तो 2 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेंगी, बताओ?
0: जब एक स्त्री काम को पूरा कर चुकी है तो 2 स्त्रियां क्या करेंगी पापा जी?
1: अबे कर नहीं चुकी हैं, कर सकती हैं।
0: पर बिना काम किए कैसे पता चलेगा पापा जी कि कितने दिन में पूरा होता है?
1: अबे सब तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं होते, पहले से हिसाब लगा लिया जाता है।
0: तो आप डांटते क्यों हैं पापा जी?
1: तुम बात ही वैसी करती हो।
0: अरे धीरे समझाइए ना।
1: अच्छा देखो, अब तुम्हारी मम्मी ने अकेले तुम्हारा स्वेटर 1 सप्ताह में बनाया। मान लो वैसा ही स्वेटर 2 औरतें एक साथ बनाती हैं तो कितने दिन में बनेगा?
0: 2 औरतें एक स्वेटर को एक साथ कैसे बनाएंगी पापा जी? एक बनाएगी तो दूसरी रुक नहीं जाएगी।
1: अब तो मैं कैसे समझाऊं? उदाहरण उदाहरण। अबे देख तू मुझे घिस तो नहीं रहा, सीधे मान ले नहीं तो झापड़ मार दूंगा, बताई दे रहा हूं मैं तुझको, समझा नहीं?
0: आपके डांटने से हम नहीं मान सकते पापा जी, आप मारेंगे तो मम्मी को बता देंगे।
1: मम्मी का डर बताती हूँ, क्या बताओगे मम्मी को?
0: यही कि आप पूरी तनख्वाह मम्मी को नहीं देते, बीच में ओवर टाइम के पैसे बचा लेते हैं।
1: नहीं भैया कुछ, देख बेटे मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो बेटे बहुत अच्छा लड़का है ना, वैसे ही मान जाएगा।
0: आप हमको शाम को चिड़ियाघर ले जाएंगे ना?
1: हाँ बाबा हाँ।
0: और हाथी पर भी बैठा लेंगे ना?
1: बेटा अपने सर पर भी बैठा लूंगा।
0: नहीं हमें फिसलना नहीं आपके सर पर बैठकर।
1: अच्छा बाबा हाथी।

0: पर बिठा दूंगा।
1: तब ठीक है, हम मान लेते हैं आपका सवाल सही है।
0: शाबाश। अच्छा तो बताओ, जब एक औरत एक काम को दो दिन में करती है तो दो औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी?
1: ये तो बहुत सरल सवाल है पापा।
0: सरल है? शाबाश। तो बेटा जवाब दो।
1: एक औरत दो दिन में तो दो औरतें चार दिन में करेंगी।
0: वाह बेटा वाह, क्या जवाब दिया। अबे गधे, चार दिन में कैसे करेंगी, एक दिन में करेंगी।
1: वाह पापा जी, एक रुपए में दो आइसक्रीम आती तो दो रुपए में चार ही तो आएगी, एक थोड़े ही आएगी।
0: बेटा ये आइसक्रीम नहीं, गणित है गणित। जितनी अधिक औरतें काम करेंगी उतनी जल्दी काम होगा या नहीं?
1: हाँ काम तो जल्दी होना चाहिए।
0: तो दो औरतें काम करेंगी तो क्या एक औरत से अधिक समय लगेगा?
1: जी नहीं।
0: फिर तो फिर चार दिन कैसे लगेंगे?
1: दो औरतें रहेंगी तो आपस में बातें भी तो करेंगी पापा जी, और काम कम बस ज्यादा, इसलिए चार दिन।
0: चिड़िया घर जाना है या नहीं?
1: अब ऐसा कोई जरूरी भी नहीं कि औरतें बातें ही करें।

0: होगा या नहीं?
1: हाँ, काम तो जल्दी होना चाहिए
0: तो दो औरतें काम करेंगी तो क्या एक औरत से अधिक समय लगेगा?
1: जी नहीं।
0: फिर तो फिर 4 दिन कैसे लगेंगे?
1: दो औरतें रहेंगी तो आपस में बातें भी तो करेंगी पापा जी, और काम कम बस ज्यादा, इसलिए 4 दिन।
0: चिड़िया घर जाना है या नहीं?
1: अब ऐसा कोई जरूरी भी नहीं कि औरतें बातें ही करें।
0: तो दो औरतें उस काम को और भी जल्दी यानी 1 दिन में पूरा कर लेंगी, समझे?
1: जी पापा जी।
0: क्या समझे?
1: जी समझ गया पापा जी।
0: अरे तो क्या समझे, बतलाओ ना।
1: जी वही पापा जी, यानी कि
0: वही क्या कर रहे हो, दिमाग में गोबर भरा है क्या? क्या समझाया मैंने अभी?
1: तो आप डांटते क्यों हैं पापा
0: जी? इतनी सीधी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती?
1: जरा धीरे बोलिए ना, नहीं तो हम रो देंगे।
0: अरे भाई देखो देखो देखो देखो, सीधी सी बात है, जितनी अधिक औरतें होंगी ना बेटा, देखो उतनी जल्दी काम होगा। एक औरत के 2 दिन तो 2 औरत के लिए 1 दिन और 4 औरतों के लिए आधा दिन, समझे?
1: और 8 औरतें हुई तो पापा जी?
0: तो बेटे पाओ दिन।
1: और 16 औरतें हुई तो पापा
0: तो जी? उसका आधा।
1: और अगर 32 औरतें हुई तो पापा जी?
0: तो उसका भी आधा बेटे।
1: वाह, 16 औरतों में भी आधा और 32 औरतों में भी आधा।
0: अबे अकल के दुश्मन, 16 औरतों में पाओ दिन का आधा और 32 औरतों में हाँ, पाओ के आधे का आधा,
1: यानी 64 औरतों में पाओ के आधे के आधा का आधा, है ना पापा जी?
0: हाँ हाँ, पाओ के आधे का आधा और 64 दुनी 128 औरतों में पाओ के आधे के आधे के आधे का आधा, यानी के पाओ का 4 बार आधा। अबे क्या मुझको बेवकूफ समझता है तू?
1: नहीं वो बात नहीं है पापा जी, मैं सोच रहा था कि पाओ दिन के आधे का आधा यानी कितना होगा।
0: क्या करूं?
1: आप सर क्यों पीटते हैं पापा जी, नहीं बता सकते तो रहने दीजिए।
0: क्या नहीं बता सकता? देख बेटा, देख बस, देख बेटा, पाओ दिन यानी के 3 घंटे, यानी के फिर 1.5 घंटा, यानी के फिर 1.5 घंटा, यानी के फिर 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, यानी के 45 मिनट, फिर उसका आधा, यानी के 20 मिनट, 22 मिनट, फिर 22.5 मिनट, समझा? है? मेरी परीक्षा लेता है? अरे ऑफिस का माना हुआ अकाउंटेंट हूँ।
1: और अगर 128 की दुगनी यानी 256 औरतें होंगी तो काम कितनी देर में हो जाएगा पापा जी?
0: तेरा सर होगा नाला, आखिर तू चाहता क्या है?
1: हम ये जानना चाहते हैं पापा जी कि अगर 1000 औरतें होंगी तो क्या होगा?
0: तो काम तुरंत हो जाएगा, शुरू होते ही हो जाएगा, बल्कि खड़े होते ही हो जाएगा, बल्कि खड़े खड़े हो जाएगा, समझा?
1: तो पापा जी अगर लाखों करोड़ों औरतें होंगी तो काम शुरू होने से पहले ही हो जाएगा ना?
0: हाँ, क्या
1: नहीं, नहीं नहीं, आपके हिसाब से वैसे ही कैसे हो सकता पापा जी?
0: यानी कि तुम हमें बेवकूफ समझते हो? बेवकूफ है मैं, ये किताब लिखने वाला तुम्हारे मास्टर सब बेवकूफ है, एक तू ही अकलमंद पैदा हुआ नौलायक गधा, यही पढ़ा है स्कूल में?
1: लेकिन ये सवाल हमने कहाँ पढ़े पापा जी? आप तो बेकार डांटते हो।
0: एक तो झूठ बोलता है और ऊपर से रोता है। ये जो चिन्ह लगे हुए ये जवाब किसने लिखे हैं बता?
1: हमें क्या मालूम।
0: अबे तो क्या मैंने लिखे हैं, दिखता नहीं? ये देख ये क्या लिखा?
1: ये तो डब्बो भैया की किताब है, हम क्या जाने।
0: ये क्या हुआ, तो पहले क्यों नहीं बताया? घंटे भर तक दिमाग चाटा, अब रोने बैठा है।
1: हम तो पहले ही बता रहे थे, आप ही ने तो डांट दिया कि चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, सिर्फ सवाल का जवाब दो, हम क्या करते?
0: अरे तो मुझको क्या मालूम था?
1: और हमको डांटा भी, हम मम्मी को बताएंगे।
0: देख बेटा पूछो, भूल गए हमसे, है बेटे, चुप हो जाओ।
1: तो वादा कीजिए आप हमको गणित कभी नहीं पढ़ाएंगे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अब सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे हैं?
1: नहीं अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे।
0: चिड़िया घर जाना है ना?
1: हाँ पापा जी, और आइसक्रीम भी खाएंगे।
0: अच्छा तो बताओ हमारे देश की जनसंख्या कितनी है?
1: 56 करोड़।
0: गलत, 44 करोड़ है।
1: 44 करोड़ तो आपके जमाने में थी पापा जी, अब 56 करोड़ हो गई है।
0: अरे बाप रे, इतनी बढ़ गई?
1: जी हाँ।
0: मुझे तो पता ही नहीं था।
1: आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया?
0: क्या होगा, किसी ने, हमें से क्या और नहीं था।
1: और क्या आप बता सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है?
0: अरे होगा कुछ।
1: और क्या आप बतला सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
0: सबसे बड़ी नदी गंगा नदी होगी।
2: और क्या आप बतला सकते हैं?

0: कि सम्राट अशोक कब गद्दी पर बैठा और महात्मा गांधी का जन्म किस सन में हुआ?
1: यह सब तो तुमने किताबों में रट रखा है। कोई ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब तुम्हें भी नहीं मालूम हो, ये नहीं कोई जनरल टाइप का।
0: अच्छा तो उस चिड़िया का नाम बतलाइए जिसकी चोंच नहीं होती।
1: ऐसी चिड़िया जिसकी चोंच नहीं होती, ऐसी चिड़िया जिसकी चोंच नहीं होती। अच्छा तुम बताओ।
0: हम नहीं बतला सकते पापा जी।
1: क्यों?
0: क्योंकि हम किसी ऐसी चिड़िया के बारे में नहीं जानते।
1: अबे तो फिर पूछा क्यों?
0: अजीब मुसीबत है, जिस सवाल का जवाब हमें नहीं मालूम वही तो पूछेंगे आपसे। आपने अभी कहा तो था।
1: क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो?
0: अब हम कैसे कहें पापा जी?
1: तो फिर ठीक से सवाल क्यों नहीं पूछते?
0: अच्छा आप ठीक से सवाल पूछेंगे, बताइए पंखा कैसे चलता है?
1: पंखा, इसका जवाब तो कोई इंजीनियर ही दे सकता।
0: अच्छा तो बताइए कि आदमी गंजा कब होता है?
1: गंजा? ये तो डॉक्टर को पता होगा, हमें नहीं मालूम।
0: लेकिन हमें दोनों सवालों का जवाब मालूम है।
1: अच्छा तो बताओ पंखा कैसे चलता है?
0: बटन दबाने से।
1: बटन दबाने से? और आदमी गंजा कैसे होता है?
0: सर के बाल झड़ने से।
1: ये बात है, हे भगवान कान पकड़ता हूँ।
0: अरे आप तो बात बात पर हमारे कान पकड़ने
1: तुम्हारे लगते नहीं बेटा, अपने कान पकड़ता हूँ। अब किसी 20वीं सदी के बच्चे से ना तो सवाल पूछूंगा और ना सवाल पूछने के लिए कहूंगा। लो बेटा तुम ये अखबार पढ़ो और मैं चला गणित की किताब लेकर बाहर।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे झलकी 20वीं सदी का बच्चा। लेखक थे श्री रमेश मुगड़ा, निर्देशक थे दीनानाथ। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, अब एक नज़र हमारे मुख्य कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कल सुबह 5:55 पर सुनिए एग्री टिप्स, विषय रहेगा फलों की तुड़ाई और सही रख रखाव। जलियानों के यात्रा कार्यक्रम से श्रोताओं आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। सवेरे 6:15 पर सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष, विषय रहेगा रूप।

रामचरित मानस गान का समय रहेगा सवेरे 6:30। सवेरे 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत। मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों के विवरण से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:50 पर। सवेरे 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम देश रागनी।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:30। सवेरे 8:30 पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम। फनकार होंगे अशोक खोसला। बाल जगत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर पंडित भीमसेन जोशी का हिंदुस्तानी शैली में गायन आप सुन पाएंगे। श्रोताओं सवेरे 10:00 सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मेरी पसंद इस कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 11:00। दिन के 11:30 पर सुनिए कार्यक्रम गजल। कलाकार होंगे अनुराधा पौडवाल, जसवंत सिंह, सोनू निगम, चंदन दास और भूपेंद्र सिंह। एक 1:10 पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार होंगे गुलाम अली। घर संसार कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:30।

0: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंक सत्यापन और पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ 9 जून को मनाई जाएगी और द्वीप समूह में 12 जून तक तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना।

इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियमों के अंतर्गत ताड़ का तेल, पॉमोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ा दी है। छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण की ओर से FSI में जलवायु परिवर्तन और समुद्री मत्स्यिकी पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, गैर सरकारी संगठनों, मछुआरों, कॉलेज छात्रों और स्थानीय समुदाय के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में मत्स्यिकी विज्ञान प्रभाग के प्रमुख डॉ. एम. मुर्गानंदम ने ऑनलाइन व्याख्यान दिया। उन्होंने भारत और दुनिया भर में महासागरों और मत्स्य संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के साक्ष्यों के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महासागरीय परिवर्तन, मछलियों पर पड़ने वाले प्रभावों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को हो रहे खतरे पर चर्चा की। डॉक्टर मुर्गानंदम ने मछुआरों के साथ जमीनी स्तर के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस बदलते परिवर्तन को देखते हुए उन्होंने मत्स्यिकी प्रबंधन रणनीतियों के वैज्ञानिक पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने स्वराजद्वीप के नीम ओ रीफ से जेट्टी मार्ग पर पारदर्शी कायाकिंग गतिविधियों के संचालन की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय अंडमान निकोबार द्वीप समूह जल क्रीड़ा दिशा निर्देश 2015 के प्रावधानों के तहत की गई जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में चल रहे जेट्टी लाइट हाउस कायाकिंग मार्ग पर भीड़ भाड़ को कम करना, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को नए अवसर प्रदान करना और साथ ही गतिविधियों की प्रभावी निगरानी और विनियमन सुनिश्चित करना है। पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रस्तावित क्षेत्र में केवल पारदर्शी कायाक के संचालन की ही अनुमति होगी। इच्छुक कायाक संचालक, केंद्र और पर्यटन हितधारक अपने आवेदन निदेशालय के साहसिक जल क्रीड़ा प्रभाग में जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और मौसम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 9 जून 2016 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को एक निश्चित दिन मुफ्त, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसाव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। यह अभियान हर महीने की 9 तारीख को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 9 जून को इस राष्ट्रव्यापी अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस वर्ष का विषय PM सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष, सुरक्षित गर्भावस्था, स्वस्थ माताएं, मजबूत भारत है। इस अवसर पर सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष स्क्रीनिंग गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे द्वीप समूह में विशेष आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है।

महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न 7 स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इच्छुक छात्र कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंड से जुड़ी अन्य सभी जानकारियां पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। अंडमान निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुल 716 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि की घोषणा प्रशासन के भर्ती पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ग्रुप बी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष जबकि ग्रुप सी के पुरुष आवेदकों की आयु 33 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के लिए पोर्टल 15 जून दोपहर 12 बजे से 5 जुलाई मध्यरात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी प्रशासन के भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध है। राजकीय प्राधिकरण विभाग की क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में वानिकी विशेषज्ञ और लेखाकार के एक एक पद पर अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 40,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन फॉर्म विभाग और प्रशासन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ 25 जून तक व्यक्तिगत रूप से हैडो स्थित वन सदन में जमा किए जा सकते हैं। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सभी लाभार्थियों से वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बायोमेट्रिक ईकेवाईसी पूरा करने का आग्रह किया है। भारत सरकार ने वार्षिक ईकेवाईसी पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लाभार्थियों ने पहले ईकेवाईसी पूरा कर लिया था उन्हें भी वर्ष 2026-27 के लिए इस वार्षिक ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। और अब मौसम। द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर आज रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जून तक तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की आशंका जताई गई है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 10 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंक सत्यापन और पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ 9 जून को मनाई जाएगी और द्वीप समूह में 12 जून तक तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचना। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के अधिकांश भागों में वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। समुद्र काफी अशांत रहेगा, अतः मछुआरों को 10 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV रानीचंगा सोमवार 8 तारीख को सवेरे 7 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना

0: होगा जलयान की वापसी अगले दिन 9 तारीख को डेलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु जलयान कल रविवार 7 तारीख को सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट सोमवार 8 तारीख को सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान होते हुए कारनिकोबार की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी 9 तारीख को दोपहर 12 बजे कारनिकोबार से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड कल रविवार 7 तारीख को सवेरे 6 बजे लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग कल रविवार 7 तारीख को सवेरे 6:15 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज कल रविवार 7 तारीख को सवेरे 6:15 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानीचंगा कल रविवार 7 तारीख को दिन में 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस बीच ये जलयान शहीद द्वीप से दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप जाएगा। स्वराज द्वीप से जलयान की वापसी दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडपे कल रविवार 7 तारीख को दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से जलयान की वापसी दोपहर बाद 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी कल रविवार 7 तारीख को दोपहर 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ और अब सुनिए जन सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जन सूचना समाप्त हुए। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं।
1: ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं गुमनाम फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, जीवन में सफलता का पहला कदम आत्मविश्वास है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है, तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकारमय राहों में भी प्रकाश फैलाता है। इसलिए कभी भी स्वयं को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि आपकी शक्ति आपके अंदर ही छिपी होती है। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, आज माह का पहला शनिवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम

0: ऐसा भी होता है,
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: दोस्तों, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी पूरी सीमा आज तक ज्ञात नहीं हो पाई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे भी ऐसी ही अरबों तारों से भरी हुई है। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि हम इस असीम ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है।

दोस्तों, पृथ्वी के महासागर आज भी पूरी तरह से खोजे नहीं जा सके हैं। माना जाता है कि समुद्र का लगभग 80 हिस्सा अभी भी अनजाना है। गहराई में ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बिना सूर्य के प्रकाश के भी जीवित रहते हैं। इन जीवों की बनावट और जीवन शैली इतनी अलग होती है कि वे किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं।

दोस्तों, मानव शरीर अपने आप में एक चमत्कार है। इसमें मौजूद दिल हर दिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है और पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। दिमाग इतनी तेजी से काम करता है कि यह 1 सेकंड में हजारों सूचनाओं को प्रोसेस कर सकता है। यही कारण है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है।

दोस्तों, हर व्यक्ति सपने देखता है, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें याद नहीं रख पाते। नींद के दौरान हमारा दिमाग बहुत सक्रिय रहता है और दिन भर की घटनाओं को व्यवस्थित करता है। यही कारण है कि अच्छी नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है।

दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यहाँ लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कई अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं। यह जंगल पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

तो दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुनेंगे।

0: फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखते हैं आप इनके महत्व को?
1: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत @2047 है
0: जी।
1: उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
0: जी,
1: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वही नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
0: जी।
1: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लड़की से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस्ड 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग। वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स। तो वो काम भी हो रहे
0: जी,
1: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही

0: देम मच मोर इन द गिवन टाइम्स. वहां भी सरकार ने प्रयास किया है कि डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती है आने वाले समय के लिए और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल.
0: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहाँ से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुँच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ट. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर.
1: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
0: Yes.
1: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer.
0: Ek yes.
1: aur jo aapne baat kari matritv support di ja rahi hai. Ji. So maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain, aur institutional deliveries 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है. जी 98 बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
0: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है.
1: जी
0: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं.
1: जी जी.
0: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी. फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया. देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टेलिटी एज यू सेड which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
1: Yes.
0: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together,
1: yes.
0: which will surely lead to healthier generations in coming times.
1: And also when
0: yes.
1: women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know,
0: yeah,
1: due to the
0: yeah.
1: Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
0: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future.
1: Yeah.
0: You can see the women have dreams about their children now,
1: mm.
0: and especially the daughters. Mm. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
1: Yes.
0: और मोदी जी जो बार बार कहते हैं, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र की जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है.
1: Yes.
0: This is the linkage. Between
1: yes.
0: women's health and the empowered or Vikasit Bharat, as we say. Atmanirbhar Bharat bhi usi mein mila hua hai.
1: Absolutely. Aditya ji, coming to you, agar hum safety ki baat kare, ek dignified life ki baat kare, to jo mission shakti, ek mission wo raha hai, muhim sarkar ka, jiske tahat unhone kai aise initiatives wo laaye hai, jisse ki mahilayein surakshit mehsoos kare, jisme abhi jo latest hai, She Box Portal, jo digital platform hai, sexual harassment complaints ka workplace pe, unko register karne ka, iske baare mein aap thoda sa bata sakti hai ki iska विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इश्यू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है RG कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए. लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति

0: मुर्मू ने खुद दो तीन बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए। मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर
1: जी
0: चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है। जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए। सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है। समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में
1: जी
0: समाज का रोल आ
1: जी
0: जाता है।
1: बिल्कुल ही पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आएं और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है, तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए, जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है, बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है।
1: जी
0: अब
1: जी
0: अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
1: बिल्कुल
0: होगी, और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज, वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल, पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो

0: एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक वुमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वुमेन एम्पावरमेंट में भी।
1: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज इजियर फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देयर कांट बी बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटेस्ट स्किल्स बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग and the market needs different kinds of skills. At times they may be digital skills in coming time. And you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also I would say or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है women led development कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी, और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार होंगे।
0: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया कि जब से वुमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
1: बिल्कुल, आई विल से दैट एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। I can say women administrators, women representatives, first timer maybe administration में तो first timer सभी होते हैं, so it really doesn't matter, they learn and I've met administrators who say that we questioned our office when they say this can't be done, तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, why are we here, तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे, और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा, और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
0: आदित्य जी,

0: लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है।
1: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया, तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
0: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी। अक्रॉस सेक्टर्स वुमेन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स। सुषमा जी, अदिति जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग डिस्कशन।
2: Thank you. In this special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal. महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक, इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक के पदों हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 11 में पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3 के तहत 2 पद और पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 10 में पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3 के अंतर्गत 3 पद रखा गया है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पात्रता मानदंड तथा आवेदन पत्र राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। योग्य अधिकारियों के नामांकन दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी इस पते पर पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय के सामने केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 11003। ये आवेदन रोजगार समाचार में प्रकाशन के तिथि से 45 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक पहुंच जाने चाहिए। इच्छुक अधिकारी अग्रिम प्रति ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं, साथ ही डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद अपूर्ण आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए 2 मई का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखा जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गौरव गान के तहत कुछ देशभक्ति गीत।

संवेद स्वर में गाए इस देशभक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, गौरव गान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को

0: बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों

0: के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरूआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता

0: पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. Says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S.

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है।

0: आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थीं। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक

0: कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आजादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आजादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत ही कारगर योगदान है, न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
1: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियां और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों, तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो फिर इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी। तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुल्टू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ल्ड पर बहुत लिखा है, उनका बेटा, वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में

0: काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात होगी, बातचीत। यंग था वो मेरे जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में तुम क्या करते हो। मैंने कहा लिखते कर। उसने कहा यार तुम लिख हमारे यहाँ दिखाओ, तुम क्या कहानी लिख, तो मैं देखू तुम्हारी कहानी। तो मैंने डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने दी, उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कुछ थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्र का हमें हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों इसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वो यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मानवीय को

0: कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सकता है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर रहे, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है, उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वही महत्व तो है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर, सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भावभंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है, उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था
3: जी,
4: उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था, किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए

0: मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
1: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
0: जी।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहां पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
0: जी,
1: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है
0: जी।
1: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
0: जी।
1: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण।

0: को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में, साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में, वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हूं
1: जी,
0: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो योगदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
0: जी।
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से, कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को, या आपस की

0: बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे
1: जी
0: छन्नू मिश्रा जी हो, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई,
1: जी
0: लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता
1: बिल्कुल
0: हूं,
1: बिल्कुल
0: वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना हूं। तो
1: जी
0: मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए, और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में
1: जी
0: सुने।
1: सर
0: तो
1: बिल्कुल
0: हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं,
1: जी
0: उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता
2: है। सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ. विकास कशाळकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशाळकर के सान्निध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाई हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.

0: ऋषिकेश गांगुली आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार हैं। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है, जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है, और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है, और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशाळकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी, ग्रैंडर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट, एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। बियॉन्ड हिज वोकल प्रोविस, ही इज एन अकम्प्लिश तबला प्लेयर and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा। The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: भी गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune, and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्र

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के अधिकांश भागों में वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। समुद्र काफी अशांत रहेगा, अतः मछुआरों को 10 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 11:25 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: बोलना।
1: क्या बोले सर?
0: हाँ माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 टाइम
1: हेलो,
0: इज। हाँ
1: माइक टेस्टिंग 1 2 3
0: हाँ अब टाइम फिर बोलना उधर। अभी
1: फोर
0: मैं इधर है ना, मैं टेस्ट करने का ऐसा है आपका भेजता, ऐसा बोलना फर्स्ट टाइम माइक वन टेस्ट करना, फिर माइक टू टेस्ट करना, फिर कंप्यूटर का लेफ्ट कंप्यूटर का कार्ट वन कार्ट टू, राइट कंप्यूटर का कार्ट वन कार्ट टू, दो
1: अच्छा
0: प्लेलिस्ट है एक ही कंप्यूटर में, फिर
1: अच्छा
0: एक कार्ट वन का ये कार्ट टू का ये इसका कार्ट वन है कार्ट टू है, इतना का आइटम से डेली मॉर्निंग में चेक करना
1: चेक
0: पड़ता।
1: करना पड़ता। अच्छा
0: अब फर्स्ट ये बात कैसे हेलो टेस्टिंग माइक, अब ठीक है तो सिग्नल कट हो तो उधर से हम लोग, और एक
1: अच्छा
0: आदमी उधर ही बैठा आपके
1: हाँ
0: इधर बैठा, आपको पूरा ऑन करके ये काम करना मॉर्निंग में आने के टाइम में,
1: अच्छा ठीक है। अच्छा
0: समझा?
1: ओके ओके
0: अब बात बात कर दीजिए।
1: अब उधर जाएगा।
0: मैं नहीं, हाँ मैं इधर बैठे करता हूँ, प्रॉब्लम ये ठीक है तो इधर ही आता सिग्नल करेक्ट आता,
1: अच्छा, इधर आएगा सिग्नल।
0: सिग्नल दे ना।

0: बात कर रहे थे, सिग्नल ऐसा आता है ना। ठीक है, बात करें।
1: हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, 446, 36 सेकेंड।
0: ओके, अब ठीक ठीक हो गया। नेक्स्ट है।
1: हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, 446, 51 सेकेंड।
0: ओके, अभी ये माइक भी टेस्ट किया। नेक्स्ट है। कंप्यूटर, लेफ्ट कंप्यूटर, कौन, हमको नहीं मालूम कौन सा कंप्यूटर टेस्ट करना है। तो पहले बात करके लेफ्ट
1: जी,
0: फर्स्ट ट्रैक, फर्स्ट कार पे, नेक्स्ट सेकंड कार पे, राइट कंप्यूटर का फर्स्ट कार पे, राइट कंप्यूटर का सेकंड कार पे
1: सुन
0: बोलना।
1: रहा
0: हम
1: है
0: फर्स्ट ये
1: जी।
0: बोल के, हेलो टेस्टिंग कंप्यूटर 1, लेफ्ट कार फर्स्ट कार पे बोल दीजिए।
1: हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, 447, 21 सेकेंड।
0: है ना, अब ये बोलना। नेक्स्ट टेस्टिंग
1: नेक्स्ट
0: कंप्यूटर, लेफ्ट कंप्यूटर कार्ट 1, ऐसे बोले तो हमको मालूम था कार्ट 1 ठीक है ना, हम उधर आदमी को मालूम होता। अब ऐसे बोल के बार बोले, एक बार बोल दीजिए।
1: क्या बोला सर?
0: टेस्टिंग कंप्यूटर 1, ए कंप्यूटर 1, ए कंप्यूटर 2, खाली लेफ्ट
1: टेस्टिंग।
0: कंप्यूटर, आपका लेफ्ट साइड है ना ये कंप्यूटर, लेफ्ट कंप्यूटर ये राइट कंप्यूटर, लेफ्ट कंप्यूटर का कार्ट 1, लेफ्ट कंप्यूटर का कार्ट 2, राइट कंप्यूटर का कार्ट 1, राइट कंप्यूटर
1: ये
0: का
1: वाला
0: कार्ट
1: वन, ये वाला टू ना सर?
0: नहीं, ये माइक, माइक में आप बात करना,
1: अच्छा,
0: क्योंकि हमको नहीं मालूम
1: ये
0: है कौन।
1: माइक का है, ये
0: हाँ,
1: वन ये टू, और इधर का
0: ये
1: ये वन ये
0: माइक,
1: टू।
0: या ये माइक का फेड रहा है,
1: हाँ
0: ये ओपन करके बात करो तो हमको उधर सुना था, क्योंकि आप ये टेस्ट करने का शुरू शुरू किया। देन या दे, एक बार टेस्ट की उसको जरूरत नहीं, एक काली बात करने के लिए टेस्टिंग कंप्यूटर, लेफ्ट कंप्यूटर कार्ट 1, एक क्लोज कर दीजिए। हाँ, बहुत बोल दिए। टेस्टिंग कम, ये डेली ये प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। टेस्टिंग लेफ्ट कंप्यूटर कार्ट 1 बोल दीजिए।
1: हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3,
0: माइक नहीं, अब माइक टेस्टिंग हो गया।
1: हो गया।
0: अब नेक्स्ट हमने कंप्यूटर टेस्ट करने का शुरू
1: अच्छा,
0: किया।
1: कंप्यूटर टेस्ट करना,
0: हाँ, अब फर्स्ट ये कौन सा कंप्यूटर टेस्ट करता, लेफ्ट कंप्यूटर।
1: लेफ्ट।
0: अब ये बात करके टेस्ट करना शुरू करना, क्योंकि हमको उधर बैठे के आदमी का कौन सा कंप्यूटर है नहीं मालूम,
1: हाँ
0: समझा। असो आप बात ना, मैं टेस्ट करने के लेफ्ट कंप्यूटर शुरू करता, एक फर्स्ट कौन सा ट्राई कर चेक करता, लेफ्ट
1: फर्स्ट
0: फर्स्ट कार्ट और कार्ट 1 का, कार्ट 1 लेफ्ट लेफ्ट कंप्यूटर का कार्ट 1, ऐसा लिखा बोल दीजिए।
1: सर, लेफ्ट
0: लेफ्ट कंप्यूटर का कार्ट 1, दो प्लेलिस्ट है ना, एक प्लेलिस्ट 1, प्लेलिस्ट 2।
1: लेफ्ट लेफ्ट कंप्यूटर का कर्प वन टेस्टिंग करता
0: हाँ,
1: है
0: तो करता है वह जैसे
1: सर।
0: देखो।
1: सर हिंदी
0: अब
1: में बोल,
0: आप, हाँ
1: हिंदी में बोल
0: हिंदी
1: रहे
0: में
1: हैं,
0: बोल दीजिए। ठीक है,
1: हिंदी
0: हाँ
1: में बोल
0: हिंदी
1: रहे
0: में बोल
1: सर।
0: दीजिए। मैं बोल रहा
1: लेफ्ट कंप्यूटर का कर्प वन टेस्टिंग करते हैं,

going to FM, एक स्टूडियो हो गया, अब टेस्ट इज ओवर गोइंग टू एफ एम स्टूडियो, देन एफ एम का सिग्नल उधर से देता, एक या दो आदमी ने गाली, एक आदमी उधर ही बैठे, एक आदमी टेस्टिंग के लिए भेजता, अब पहले आपका पहले ये स्टूडियो पर टेस्ट करने का ये फर्स्ट ओपन है, इसके बाद एफ एम स्टूडियो जाएगा, एफ एम स्टूडियो के बाद टॉक स्टूडियो जाकर टेस्ट

0: यही डेली मॉर्निंग में प्रैक्टिस होता है,
1: ओके
0: ठीक है ना। अभी टेस्टिंग कोई नहीं, माइक ओपन करके माइक टेस्ट करना, फर्स्ट ईयर माइक टेस्ट करना, नेक्स्ट ईयर माइक टेस्ट करना, फिर ये माइक में बात ओपन करके फर्स्ट ईयर कंप्यूटर का ये फेडर, ये कार्ट राइट कंप्यूटर का, फर्स्ट कार्ट राइट कंप्यूटर का, सेकंड फेडर
1: ठीक
0: समझ
1: है।
0: जाएगा ये
1: हाँ
0: कंप्यूटर का, दूसरे का कोई
1: ये
0: टेस्ट।
1: दोनों इसका ही, ये दोनों इसका है ना सर?
0: ये दो, ये इसका
1: हाँ ये तो सर माइक।

0: माइक टेस्टिंग 1 2 3।
1: टाइम इज
0: 5:00।
1: सेरो मैंने 10 सेकंड 12:30।
0: ट्वेल्व थर्टी हाँ।

माइक टेस्टिंग 1 2 3 टाइम इज 5:35 सेकंड टेस्टिंग राइट कंप्यूटर

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और 30 सेकेंड हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:30 हुए हैं। शुभारंभ इसके तहत सुनिए अनमोल विचार।
1: तारीफ एक ऐसा उपहार है जो बिना किसी कीमत के किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। सच्ची और दिल से की गई प्रशंसा न केवल व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाती है बल्कि उसे और बेहतर करने की प्रेरणा भी देती है। इसलिए जब भी किसी में कोई अच्छी बात दिखाई दे उसकी खुले मन से सराहना करें। आपकी एक छोटी सी तारीफ किसी के दिल को खास बना सकती है।
0: अनमोल विचार के बाद अब आरंभ होता है भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो आइए सबसे पहले सुनिए मातृवंदना संवेद स्वरों में।